0: वाहे गुरु जी का खालसा, वाहे गुरु जी की फतेह।
1: कैलगरी 24 घंटे 7 दिन प्रसारित होने वाले इको एक पंजाबी धार्मिक रेडियो 102.7 FM ते हर हफ्ते सोमवार तो शुक्रवार शाम 6 बजे तो 8 बजे तक तुसी सुनदे हो गुरबाणी विचार प्रोग्राम पंजाबी रेडियो कैलगरी दे होस्ट प्रोफेसर मनजीत सिंह प्यासा द्वारा।
2: प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक फेयर डील फर्नीचर दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। किसे भी तरह दे मॉडर्न ट्रेडिशनल कस्टमाइज्ड फर्नीचर दी जानकारी ले पिछले 33 सालां तों कैलगरी विच सेवावां दे रहे फेयर डील फर्नीचर नु कॉल करो 403-250-5646 403-250-5646। इना दा पता है 2023 34th स्ट्रीट नॉर्थ ईस्ट कैलगरी। प्रोग्राम दा ए हिस्सा खालसा कलेक्शन दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। इना कोल सभ्याचारक अते धार्मिक जिवें कि गुटका साहब गतका अते दुमाला शस्त्र ककार हर प्रकार दे म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट्स दस्तारां छोटी बच्चियां दे सूट सर्ब लो दे पांडे फुलकारियां ते लोईयां वर्गियां वस्तां उपलब्ध हन। होर जानकारी लई 587-917-0807 ते कॉल करो। खालसा कलेक्शन दा पता नोट करो, सेकंड फ्लोर यूनिट नंबर 3210 4310 104 एवेन्यू नॉर्थ ईस्ट कैलगरी।
1: प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक परमजीत पलाहा डिजर्डिन इंश्योरेंस एजेंट दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है।
3: इना तो किसे तरह दी इंश्योरेंस जिवें लाइफ डिसेबिलिटी ऑटो होम मोटरबाइक बोट अते होर बिजनेस इंश्योरेंस बारे जानकारी लैण लई तुसी परमजीत पलाहा जी नूं 403-554-4444
1: यानी 403-554-4444 ते संपर्क कर सकदे हो। परमजीत पलाहा जी दे ऑफिस दा पता है यूनिट नंबर 210-2323 32nd एवेन्यू नॉर्थ ईस्ट कैलगरी।
4: प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक M&R रूफिंग एंड साइटिंग लिमिटेड दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। इना तो किसे भी तरह दी रूफिंग साइडिंग स्टुको सॉफ्ट फिश या स्मार्ट ट्रिम फ्लैट रूफ अते रेनोवेशन बारे कोई भी जानकारी लैण लई तुसी रंजीत विर्क जी नूं 403-903-0483 यानी 403-903-0483 ते संपर्क कर सकते हो। M&R रूफिंग एंड साइडिंग लिमिटेड।
1: पंजाबी रेडियो 102.7 FM ते प्रसारित होने वाले प्रोग्रामा ते जो

विचार पेश कीते जांदे ने ओ उना विद्वाना दे अपने विचार ने। रेडियो अदारा 102.7 FM इना दे नाल सहमत होवे ए लाजमी नहीं।

कैलगरीज 24 घंटे 7 दिन चलन वाला इको एक पंजाबी धार्मिक रेडियो पंजाबी रेडियो 102.7 FM धार्मिक प्रोग्रामा दा आनंद मानन ले आज ही अपने करा ते कारा दी रेडियो नू पंजाबी रेडियो 102.7 FM ते ट्यून करो पंजाबी रेडियो।

प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक मालवा टायर्स एंड सर्विसेज दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। ए 24 घंटे 7 दिन मोबाइल सर्विसेज प्रदान करदे ने। इन्हां तों किसी भी तरह दे नवें ते पुराने ट्रक एंड ट्रेलर टायर्स, व्हील बैलेंस एंड अलाइनमेंट्स, टायर रोटेशन एंड रिपेयर्स दीआं सेवावां लैण लई तुसीं मालवा टायर्स नूं 403-899-1985 जां फिर 403-899

0: ਜਿਵੇਂ ਢੋਲ, ਹਾਰਮੋਨੀਅਮ, ਤਬਲਾ, ਤੂੰਬੀ ਅਤੇ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੂਜਾ ਦੇ ਸਮਾਨ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਕਾਲ ਕਰੋ 403-768-1681 403-768-1681। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਨੋਟ ਕਰੋ, ਯੂਨਿਟ ਨੰਬਰ 1120 4150 109th ਐਵੀਨਿਊ ਨੌਰਥ ਈਸਟ ਕੈਲਗਰੀ।
1: प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक HMP कस्टम कैबिनेट्स दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। इना तो किसी भी तरह दे कस्टम किचन, बार्स, वॉशरूम वैनिटी, क्लोजेट अते कमर्शियल मिल वर्क बारे कोई भी जानकारी लैण लई तुसी पॉल सेखों जी नूं 403-829-5000 या फिर 403-701-4947 ते संपर्क कर सकदे हो। HMP कस्टम कैबिनेट्स लिमिटेड दा पता है यूनिट नंबर 11-2316 27 एवेन्यू नॉर्थ ईस्ट कैलगरी। पंजाबी रेडियो 102.7 FM ते प्रसारित होण वाले प्रोग्रामा ते जो भी विचार पेश कीते जांदे ने ओ उना विद्वाना दे अपने विचार ने। रेडियो अदारा 102.7 FM इना दे नाल सहमत होवे ए लाजमी नहीं।

0: ਸਾਇੰਸ ਕਰਿਊ ਫਾਈਲਸ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੋਮ ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ, ਪੈਟੀਓ ਡੈਕ, ਪ੍ਰੀਕਾਸਟ ਕੰਕਰੀਟ ਸਟੈਪ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੌਫਟ ਗਰਾਊਂਡ ਜਿਵੇਂ ਗਰਾਜ ਫਲੋਰ ਦੇ ਸਟਰੋਂਗ ਅਤੇ ਸਿਕਿਓਰ ਬੇਸ ਲਈ ਸਕਰਿਊ ਫਾਈਲਸ ਇੰਸਟਾਲ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਜਸਕਰਨ ਬਰਾੜ ਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰੋ 403-439-7700 403-439-7700।
1: प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक पंजाब फर्नीचर्स एंड डेकोर दी सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। इना तो किसी भी तरह दे इंडियन टीक वुड मेड बेड बॉक्स, सोफे, लिविंग डाइनिंग ते बेडरूम फर्नीचर तो इलावा होम डेकोर दे सामान बारे कोई भी जानकारी लैण लई तुसी पंजाब फर्नीचर्स एंड डेकोर नू 403-798-0063 यानी 403-798-0063 ते संपर्क कर सकते हो। पंजाब फर्नीचर्स एंड डेकोर दा पता है यूनिट नंबर 2110 76 वेस्ट विंड्स क्रिसेंट नॉर्थ ईस्ट कैलगरी।
0: प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक एग्जोटिक एक्सटीरियर्स ग्रुप दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। किसी भी तरह की साइडिंग, रूफिंग, सॉफ्ट फेशिया, जेम्स हार्डी, ईव स्ट्रॉफ अते स्मार्ट बोर्ड दे काम कराने की जानकारी लई एग्जोटिक एक्सटीरियर्स ग्रुप नू कॉल कर सकते हो 403-710-0007 403-710-0007। प्रोग्राम दा ए हिस्सा खालसा कलेक्शन दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। इना कोल सभ्याचारक अते धार्मिक जिवें कि गुटका साहब, गतका अते दुमाला, शस्त्र, ककार, हर प्रकार दे म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट्स, दस्तारां, छोटी बच्चियां दे सूट, सर्ब लो दे पांडे, फुलकारियां अते लोईयां वर्गियां वस्तां उपलब्ध हन। होर जानकारी लई 587-917-0807 ते कॉल करो। खालसा कलेक्शन दा पता नोट करो, सेकंड फ्लोर, यूनिट नंबर 3210, 4310, 104 एवेन्यू, नॉर्थ ईस्ट कैलगरी।
1: प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक सुंदर लंबर इंडस्ट्रीज दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। इना तो तुसी फुल हाउस लंबर पैकेज, बेसमेंट ते गराज मटेरियल दे नाल नाल सीडर ते फेंस दे सामान बारे कोई भी जानकारी लैण लई 403-433-5555 जां फिर 403-717-3899 ते संपर्क कर सकते हो। सुंदर लंबर इंडस्ट्रीज दा पता है 3501 23rd Street, नॉर्थ ईस्ट कैलगरी। पंजाबी रेडियो 102.7 FM ते प्रसारित होने वाले प्रोग्रामा ते जो भी विचार पेश कीते जांदे ने ओ उना विद्वाना दे अपने विचार ने। रेडियो अदारा 102.7 FM इना दे नाल सहमत होवे ए लाजमी नहीं।

सतगुरु जुगो जुग अटल तखत चवर छत्र जी दे मालक दसां पातशाहियां दी आत्मक जोत समुची मनुखता दे सांझे रहवर साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब सच्चे पातशाह जी दी पावन पवित्र निघी गोद दा आनंद माण रही गुरु रूप खालसा साध संगत जी वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। आप जी ने अज सचखंड श्री हरिमंदर साहब तो आए हुए इलाही हुक्मनामे का मूल पाठ सत्कारयोग सिंह साहब जी तो सरवण किया है। आओ पहला हुक्मनामा साहब की विचार उस तो बार जिन्ना समा सतगुरु बख्शिश करनगे लड़ीवार जो कथा प्रारंभ है उस दे संबंध विच आपने विचार करनी है। खालसा जी गुरबाणी दे विच सतगुरु महाराज लिखना करदे है बहती जात कदे दृष्ट न धारत मिथ्या मोह बंधै निच पारत माधवे भज दिन रैणी जन्म पदार्थ जीत हर शरणी। ये जड़ी साड़ी उम्र है जिमें नदी का बहन बहंदा जांदा है एक बारी जिहड़ी पानी की छल लंघ गई दुबारे नहीं आउंदी इसे तरह नदी दे बहन वांगू साड़ी उम्र दिन पर दिन घटती ही जा रही है। छिन छिन औद बिहात है फूटे घट ज्यों पानी पानी का घड़ा है उहदे विच छेक हो जाए हौली हौली पानी सारा ही निकल जाता है। शरीर रूपी घड़ा है श्वासां रूपी पानी है मिंट मिंट सैकंड सैकंड उम्र साड़ी घट रही है दिन प्रतिदिन। सो सतगुरु साहब कहिंदे बैती जात कदे दृष्ट ना धारत हे मनुख तू कदे इस पासे तो निगे ही नहीं मारदा कि मेरी उम्र नदी दे बहन वांगू बहिंदी जा रही है। कदे दृष्ट ना धारत मिथ्या मोह बंधै नित पारच

हम सर मेरे वर्गा कोई गरीब नहीं नमाना नहीं, हम सर दीन दयाल ना तुम सर। सच्चे पातशाह जी तुहाडे वर्गा कोई दयालू कृपालू नहीं, क्योंकि आप जी ने सरवण किया। आपां इहदा अर्थ इत्थों शुरू किया ना, कारण कवन अबोल। सरगुण सरूप च दर्शन तां होए परंतु आप जी बोलदे क्यों नहीं। फिर वह बेनती कर रहे ने, मेरे वर्गा कोई नीच नहीं नीमा नहीं, हम सर दीन मेरे वर्गा कोई गरीब नहीं, तेरे वर्गा दयालू कृपालू नहीं सच्चे पातशाह। अब पत्यार क्या कीजै, हुण मेरा केड़ा टेस्ट लै रहे हो, केड़ी मेरी परख कर रहे हो। ए भगत रविदास जी वचन उचारना।

सब तेरी, ये जेड़ी सृष्टि दी रचना सारी रचना तेरी कीती हुई है। रचना करन तो बाद सरगुण स्वरूप संसार, सरगुण सरगुण भी तू है, निर्गुण भी तू है। सरगुण रूप दी रचना तैं कीती है सारी सृष्टि दी। सब तेरी तू मेरा प्रीतम, सब तेरे हन। रचना बाहरली सृष्टि जिन्नी है रचना तैं कीती है, इत्थे तू मेरा प्यारा है, मेरा प्रीतम है। प्रीतम मुन सब तेरी तू मेरा प्रीतम, मुन निसबासर रंग राव है। निस दा की अर्थ है रात, बासुर दा अर्थ की है दिन। निसबासुर पाठ जिथे आवे ना इहदा अर्थ हुंदा दिन रात। कई जगह निस दिन भी आ जांदा है पाठ। निस मतलब रात है, निस दा अर्थ हमेशा रात करना है। दिन तो भाव दिन, इत्थे बासुर आ गया, बासुर तो भाव दिन। जिहड़े वाहिगुरू दे प्यारे ने ना ओ दिन रात ही परमेश्वर दी प्राप्ति रूप सेजा दा आनंद माणदे रहिंदे ने। रंग राव है, ओ रत्ते रहिंदे ने परमेश्वर दे रंग विच दिन रात। ओ संत रूप सखियां दी जिहड़ी जीव इस्त्री संगत करदी है, संत रूप सखियां दी संगत करन करके जीव इस्त्री जिहड़ी है ओ दिन रात ही तेरे मलाप रूपी आनंद नूं प्राप्त करदी है। रंग राव है, दिन रात ही तेरी प्राप्ति रूप रंग नूं मानना करदी है जीव रूप इस्त्री जिहड़ी दिन रात।

0: प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक पंजाब फर्नीचर्स एंड डेकोर दी सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। इना तो किसी भी तरह दे इंडियन टीक वुड मेड बेड बॉक्स, सोफे, लिविंग डाइनिंग ते बेडरूम फर्नीचर तो इलावा होम डेकोर दे सामान बारे कोई भी जानकारी लैन ले तुसी पंजाब फर्नीचर्स एंड डेकोर नू 403-798-0063 यानी 403-798-0063 ते संपर्क कर सकते हो। पंजाब फर्नीचर्स एंड डेकोर दा पता है यूनिट नंबर 2110 76 वेस्ट विंड्स क्रिसेंट नॉर्थ ईस्ट कैलगरी। ए प्रोग्राम तुहाडे तक केयरिंग होम हेल्थ सॉल्यूशंस वालियां दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। विजिट केयरिंग होम हेल्थ सॉल्यूशंस यूनिट नंबर 124-4774 वेस्ट विंड्स ड्राइव नॉर्थ ईस्ट कैलगरी। किसी भी तरह की जानकारी ले आज ही केयरिंग ते कॉल करो 403-605-6300 ते यानी 403-605-6300 ते।
1: प्रोग्राम दा ए हिस्सा इंटरनेशनल एजुकेशन एंड एम्प्लॉयमेंट लिमिटेड दे सहयोग नाल तुहाडे तक पहुंचाया जा रहा है। जे कोई तुहाडा रिश्तेदार कैनेडा विच पढ़न लई आउणा चाहुंदा है यां तुसी कैनेडा विच रहंदे हो ते किसे भी कॉलेज विच पढ़न लई एडमिशन लैणी चाहुंदे हो तां इस दी जानकारी लई कॉल करो बॉबी डॉड एट 403-561-9811 403-561-9811 साडा पता है इंटरनेशनल एजुकेशन 1130-4818 वेस्ट विंड्स ड्राइव नॉर्थ ईस्ट कैलगरी। प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक रासा प्लेडियम दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। फैमिली डिनर, केटरिंग, स्मॉल बर्थडे पार्टीज अते होर जानकारी लई कॉल करो 403-454-0347 403-454-0347 रासा प्लेडियम दा पता है 202 17th Avenue

0: कैलगरी 24 घंटे सत्तो दिन प्रसारित होने वाले इको एक पंजाबी धार्मिक रेडियो 102.7 एफएम ते हर हफ्ते सोमवार तो शुक्रवार शाम 6 बजे तो 8 बजे तक तुसी सुनदे हो गुरबाणी विचार प्रोग्राम पंजाबी रेडियो कैलगरी दे होस्ट प्रोफेसर मनजीत सिंह प्यासा द्वारा। प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक परमजीत पलाहा डेजर्डिन इंश्योरेंस एजेंट दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है।
1: इना तो किसे तरह दी इंश्योरेंस जिवें लाइफ डिसेबिलिटी ऑटो होम मोटरबाइक बोट अते होर बिजनेस इंश्योरेंस बारे जानकारी लैण लई तुसी परमजीत पलाहा जी नूं 403-554-4444
0: यानी 403-554-4444 ते संपर्क कर सकदे हो। परमजीत पलाहा जी दे ऑफिस दा पता है यूनिट नंबर 210 2323 32nd Avenue North East Calgary।

0: प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक ट्रैवल वर्ल्ड दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। टिकटां दी किसी भी तरह दी जानकारी लैण लई तुसी अज ही ट्रैवल वर्ल्ड नूं 403-717-0771 ते यानी 403-717-0771 ते संपर्क कर सकते हो। ट्रैवल वर्ल्ड दा पूरा पता नोट करो, ग्रीन प्लाजा यूनिट नंबर 1130 4818 वेस्ट विंड ड्राइव नॉर्थ ईस्ट कैलगरी।
1: प्रोग्राम दा ए हिस्सा खालसा कलेक्शन दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। इना कोल सभ्याचारक अते धार्मिक जिवें कि गुटका साहब, गतका अते दुमाला, शस्त्र, ककार, हर प्रकार दे म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट्स, दस्तारां, छोटी बच्चियां दे सूट, सरब लो दे पांडे, फुलकारियां ते लोईयां वर्गियां वस्तां उपलब्ध हन। होर जानकारी लई 587-917-0807 ते कॉल करो। खालसा कलेक्शन दा पता नोट करो, सेकंड फ्लोर यूनिट नंबर 3210-4310-104 एवेन्यू नॉर्थ ईस्ट कैलगरी।

0: प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक सुंदर लंबर इंडस्ट्रीज दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। इना तो तुसी फुल हाउस लंबर पैकेज, बेसमेंट ते गैराज मटेरियल दे नाल नाल सीटर ते फेंस दे समान बारे कोई भी जानकारी लैण लई 403-433-5555 यानी 403-433-5555 ते संपर्क कर सकदे हो। सुंदर लंबर इंडस्ट्रीज दा पता है 3501 23rd Street, नॉर्थ ईस्ट, कैलगरी। प्रोग्राम दा ए हिस्सा त्वाडे तक कैनेडियन स्क्रू पाइल्स दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। होम एक्सटेंशन, पैटियो डेक, प्रीकास्ट कंक्रीट स्टेप अते किसी भी तरह दी सॉफ्ट ग्राउंड जिमें गैराज फ्लोर दे स्ट्रोंग अते सिक्योर बेस लई स्क्रू पाइल्स इंस्टॉल कराउण लई जसकरन बराड़ नू कॉल करो 403-439-7700 403-439-7700
1: प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक मालवा टायर्स एंड सर्विसेज दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। ए 24 घंटे 7 दिन मोबाइल सर्विसेज प्रदान करदे ने। इना तो किसी भी तरह दे नवे ते पुराने ट्रक एंड ट्रेलर टायर्स, व्हील बैलेंस एंड अलाइनमेंट्स, टायर रोटेशन एंड रिपेयर्स दीयां सेवावां लैण लई तुसी मालवा टायर्स नूं 403-899-1985 जां फिर 403-899-1984 ते संपर्क कर सकते हो। मालवा टायर्स एंड सर्विसेज दा पता है बिल्डिंग नंबर 8616 44th Street, साउथ ईस्ट, कैलगरी।

0: कैलगरी विच 24 घंटे सत्तो दिन चलन वाले
1: पंजाबी रेडियो 102.7 FM वालों हर रोज शब्द कीर्तन धार्मिक कथा ढाडी वारा तो इलावा होर भी बहुत सारे धार्मिक प्रोग्राम प्रसारित किए जाते ने जिन्हां च स्टूडियो दे नंबर उत्ते कॉल करके तुसी भी हिस्सा ले सकते हो।
0: प्रोग्रामा संबंधी या सहयोग ले किसी भी तरह की जानकारी लेने ले तुसी फोन कर सकते हो। फोन नंबर है 403-238-4067 403-238-6667।
1: होर जानकारी ले विजिट करो punjabiradio.ca। ए प्रोग्राम तुहाडे तक केयरिंग होम हेल्थ सॉल्यूशंस वालियां दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। विजिट केयरिंग होम हेल्थ सॉल्यूशंस, यूनिट नंबर 124-4774 वेस्ट विंस ड्राइव नॉर्थ ईस्ट कैलगरी। किसी भी तरह की जानकारी ले आज ही केयरिंग ते कॉल करो 403-605-6300 ते यानी 403-605-6300 ते।
2: प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक रासा प्लेडियम दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। फैमिली डिनर, केटरिंग, स्मॉल बर्थडे पार्टीज अते होर जानकारी लई कॉल करो 403-454-0347 403-454-0347 रासा प्लेडियम दा पता है 202 17th Avenue South East Calgary near Stanford।

0: प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक एग्जोटिक एक्सटीरियर्स ग्रुप दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। किसी भी तरह की साइडिंग, रूफिंग, सॉफ्ट फेशिया, जेम्स हार्डी, ईव स्ट्रॉफ अते स्मार्ट बोर्ड दे कम कराउण दी जानकारी लई एग्जोटिक एक्सटीरियर्स ग्रुप नू कॉल कर सकदे हो 403-710-0007 403-710-0007।
1: कैलगरी च इको एक धार्मिक रेडियो पंजाबी रेडियो 102.7 FM जिथे 24 घंटे सत्तो दिन बहुत सारे धार्मिक प्रोग्राम पेश कीते जांदे ने। इना प्रोग्रामा नू स्पॉन्सर करन लई तुसी पंजाबी रेडियो 102.7 FM नू 403-238-6667 यानी 403-238-6667 ते संपर्क कर सकते हो। सुनते रहो पंजाबी रेडियो 102.7 FM कैलगरी।

प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक मालवा टायर्स एंड सर्विसेज दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। ए 24 घंटे सत्तो दिन मोबाइल सर्विसेज प्रदान करदे ने। इना तो किसी भी तरह दे नवे ते पुराने ट्रक एंड ट्रेलर टायर्स, व्हील बैलेंस एंड अलाइनमेंट्स, टायर रोटेशन एंड रिपेयर्स दीयां सेवावां लैण लई तुसीं मालवा टायर्स नूं 403-899-1985 जां फिर 403-899-1984 ते संपर्क कर सकते हो। मालवा टायर्स एंड सर्विसेज दा पता है, बिल्डिंग नंबर 8616, 44th स्ट्रीट, साउथ ईस्ट, कैलगरी। प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक M&R रूफिंग एंड साइटिंग लिमिटेड दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। इना तो किसी भी तरह दी रूफिंग, साइडिंग, स्टुको, सॉफ्ट फेशिया, स्मार्ट ट्रिम, फ्लैट रूफ अते रेनोवेशन बारे कोई भी जानकारी लैण लई तुसी रंजीत विर्क जी नूं 403-903-0483 यानी 403-903-0483 ते संपर्क कर सकदे हो। M&R रूफिंग एंड साइडिंग लिमिटेड।

0: प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक कैसिडी हे इंजरी लॉ तों तारा कैसिडी जी दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। इन्हां तों किसी भी तरह दे मोटर व्हीकल एक्सीडेंट इंजरी क्लेम बारे कोई भी जानकारी लैण लई तुसी तारा कैसिडी जी नूं 403-770-1099 यानी 403-777-1099 ते संपर्क कर सकते हो। कैसिडी हे इंजरी ला दा पता है यूनिट नंबर 1507 14 एवेन्यू साउथ वेस्ट कैलगरी।
1: प्रोग्राम दा ए हिस्सा इंटरनेशनल एजुकेशन एंड एम्प्लॉयमेंट लिमिटेड दे सहयोग नाल तुहाडे तक पहुंचाया जा रहा है। जे कोई तुहाडा रिश्तेदार कैनेडा विच पढ़न लई आना चाहुंदा है या तुसी कैनेडा विच रहंदे हो ते किसी भी कॉलेज विच पढ़न लई एडमिशन लैनी चाहुंदे हो ता इस दी जानकारी लई कॉल करो बॉबी डॉड एट 403-561-9811 403-561-9811 साडा पता है इंटरनेशनल एजुकेशन 1130 4818 वेस्ट विंड्स ड्राइव नॉर्थ ईस्ट कैलगरी।

0: प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक सुंदर बिल्डिंग एंड सप्लाईज दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। इना तो किसी भी तरह दे ड्राईवॉल, रूफिंग, इंसुलेशन दे नाल नाल किसी भी प्रकार दे कस्टम मेटल मिटन साइडिंग दे सामान बारे कोई भी जानकारी लैण लई तुसी अज ही निर्वैर जौहल जी नूं 403-690-8700 यानी 403-690-8700 जां फिर भजन सिंह जौहल जी नूं 403-561-0227 यानी 403-561-0227 ते संपर्क कर सकते हो। सुंदर बिल्डिंग एंड सप्लाईज लिमिटेड दे ऑफिस दा पता है यूनिट नंबर 4612 6th स्ट्रीट नॉर्थ ईस्ट कैलगरी।
1: प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक कैनेडियन स्क्रू पाइल्स दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। होम एक्सटेंशन, पैटियो डेक, प्रीकास्ट कंक्रीट स्टेप अते किसी भी तरह दी सॉफ्ट ग्राउंड जिमें गैराज फ्लोर दे स्ट्रॉन्ग अते सिक्योर बेस लई स्क्रू पाइल्स इंस्टॉल कराउण लई जसकरन बराड़ नू कॉल करो 403-439-7700 403-439-7700
2: प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक एशिया पैसिफिक इमीग्रेशन दे मनिंदर सिंह ढिल्लो होरां दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। इन्हां दा फोन नंबर नोट करो 403-225-1111 403-225-1111 एशिया पैसिफिक इमीग्रेशन दे मनिंदर सिंह ढिल्लो होरां दा पता नोट करो यूनिट नंबर 144 3670 ट्रेंट एवेन्यू नॉर्थ ईस्ट कैलगरी।

प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक पाठ पूजा वालियां दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। इना कोल धार्मिक ऑडियो अते वीडियो, रेडियो, धार्मिक वॉल हैंगिंग्स, शस्त्र, ककार, म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट्स जिवें ढोल, हारमोनियम, तबला, तुम्बी अते हर तरह दे पूजा दे समान दी जानकारी ले कॉल करो 403-768-1681 403-768-1681। इना दा पता नोट करो, यूनिट नंबर 1120 4150 109th एवेन्यू नॉर्थ ईस्ट कैलगरी। प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक सुंदर लंबर इंडस्ट्रीज दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। इना तो तुसी फुल हाउस लंबर पैकेज, बेसमेंट ते गैराज मटेरियल दे नाल नाल सीटर ते फेंस दे समान बारे कोई भी जानकारी लैण लई 403-433-5555 यानी 403-433-5555 ते संपर्क कर सकदे हो। सुंदर लंबर इंडस्ट्रीज दा पता है 3501 23rd स्ट्रीट नॉर्थ ईस्ट कैलगरी।

0: कैलगरी विच 24 घंटे 7 दिन चलन वाले
1: पंजाबी रेडियो 102.7 FM वालों हर रोज शब्द कीर्तन धार्मिक कथा ढाडी वारा तो इलावा होर भी बहुत सारे धार्मिक प्रोग्राम प्रसारित किए जाते ने जिन्हां च स्टूडियो दे नंबर उत्ते कॉल करके तुसी भी हिस्सा ले सकते हो।
0: प्रोग्रामा संबंधी या सहयोग ले किसी भी तरह की जानकारी लेने ले तुसी फोन कर सकते हो। फोन नंबर है 403-238-6667।
1: होर जानकारी ले विजिट करो punjabiradio.ca।

0: प्रोग्राम का यह हिस्सा तुहाडे तक एग्जोटिक एक्सटीरियर्स ग्रुप के सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। किसी भी तरह की साइडिंग, रूफिंग, सॉफ्ट फेशिया, जेम्स हार्डी, ईव स्ट्रॉफ अते स्मार्ट बोर्ड दे काम कराउण दी जानकारी लई एग्जोटिक एक्सटीरियर्स ग्रुप नूं कॉल कर सकदे हो 403-710-0007 403-710-0007।
1: कैलगरी च इको एक धार्मिक रेडियो पंजाबी रेडियो 102.7 FM जिथे 24 घंटे सत्तो दिन बहुत सारे धार्मिक प्रोग्राम पेश कीते जांदे ने। इना प्रोग्रामा नू स्पॉन्सर करन लई तुसी पंजाबी रेडियो 102.7 FM नू 403-238-6666 यानी 403-238-6667 ते संपर्क कर सकते हो। सुनते रहो पंजाबी रेडियो 102.7 FM।

प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक मालवा टायर्स एंड सर्विसेज दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। ए 24 घंटे सत्तो दिन मोबाइल सर्विसेज प्रदान करदे ने। इना तो किसी भी तरह दे नवे ते पुराने ट्रक एंड ट्रेलर टायर्स, व्हील बैलेंस एंड अलाइनमेंट्स, टायर रोटेशन एंड रिपेयर्स दीयां सेवावां लैण लई तुसी मालवा टायर्स नूं 403-899-1985 जां फिर 403-899-1984 ते संपर्क कर सकते हो। मालवा टायर्स एंड सर्विसेज दा पता है, बिल्डिंग नंबर 8616, 44th स्ट्रीट, साउथ ईस्ट, कैलगरी। प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक HMP कस्टम कैबिनेट्स दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। इना तो किसी भी तरह दे कस्टम किचन, बार्स, वॉशरूम वैनिटी, क्लाजेट अते कमर्शियल मिल वर्क बारे कोई भी जानकारी लैण लई तुसी पॉल सेखों जी नूं 403-829-5000 या फिर 403-701-4947 ते संपर्क कर सकते हो। HMP कस्टम कैबिनेट्स लिमिटेड दा पता है, यूनिट नंबर 11-2316 27 एवेन्यू नॉर्थ ईस्ट, कैलगरी। प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक M&R रूफिंग एंड साइटिंग लिमिटेड दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। इना तो किसी भी तरह दी रूफिंग, साइडिंग, स्टुको, सॉफ्ट फेशिया, स्मार्ट रिम, फ्लैट रूफ अते रेनोवेशन बारे कोई भी जानकारी लैण लई तुसी रंजीत विर्क जी नूं 403-903-0483 यानी 403-903-0483 ते संपर्क कर सकते हो। M&R रूफिंग एंड साइडिंग लिमिटेड।

0: प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक कैसिडी हे इंजरी लॉ तो तारा कैसिडी जी दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। इना तो किसी भी तरह दे मोटर व्हीकल एक्सीडेंट इंजरी क्लेम बारे कोई भी जानकारी लैण लई तुसी तारा कैसिडी जी नूं 403-770-1099 यानी 403-777-1099 ते संपर्क कर सकते हो। कैसिडी हे इंजरी ला दा पता है, यूनिट नंबर 1507 14 एवेन्यू साउथ वेस्ट कैलगरी।
1: प्रोग्राम दा ए हिस्सा इंटरनेशनल एजुकेशन एंड एम्प्लॉयमेंट लिमिटेड दे सहयोग नाल तुहाडे तक पहुंचाया जा रहा है। जे कोई तुहाडा रिश्तेदार कैनेडा विच पढ़न लई आना चाहुंदा है या तुसी कैनेडा विच रहिंदे हो ते किसी भी कॉलेज विच पढ़न लई एडमिशन लैनी चाहुंदे हो तां इस दी जानकारी लई कॉल करो बॉबी डॉड एट 403-561-9811 403-561-9811 साडा पता है इंटरनेशनल एजुकेशन 1130 4818 वेस्ट विंड्स ड्राइव नॉर्थ ईस्ट कैलगरी।

0: प्रोग्राम दा एह हिस्सा तुहाडे तक सुंदर बिल्डिंग एंड सप्लाईज दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। इना तो किसी भी तरह दे ड्राई वॉल रूफिंग इंसुलेशन दे नाल नाल किसी भी प्रकार दे कस्टम मेटल मिटन साइडिंग दे सामान बारे कोई भी जानकारी लैण लई तुसी अज ही निर्वैर जौहल जी नूं 403-690-8700 यानी 403-690-8700 या फिर भजन सिंह जौहल जी नूं 403-561-0227 यानी 403-561-0227 ते संपर्क कर सकते हो। सुंदर बिल्डिंग एंड सप्लाईज लिमिटेड दे ऑफिस दा पता है यूनिट नंबर 4612 6th स्ट्रीट नॉर्थ ईस्ट कैलगरी।
1: प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक कैनेडियन स्क्रू पाइल्स दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। होम एक्सटेंशन पैटियो डेक प्रीकास्ट कंक्रीट स्टेप अते किसी भी तरह दी सॉफ्ट ग्राउंड जिमें गैराज फ्लोर दे स्ट्रॉन्ग अते सिक्योर बेस लई स्क्रू पाइल्स इंस्टॉल कराउण लई जसकरन बराड़ नू कॉल करो 403-439-7700 403-439-7700
2: प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक एशिया पैसिफिक इमीग्रेशन दे मनिंदर सिंह टिल्लो होरां दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। इना दा फोन नंबर नोट करो 403-225-1111 403-225-1111 एशिया पैसिफिक इमीग्रेशन दे मनिंदर सिंह टिल्लो होरां दा पता नोट करो यूनिट नंबर 144 3670 63 एवेन्यू नॉर्थ ईस्ट कैलगरी।

प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक पाठ पूजा वालियां दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। इना कोल धार्मिक ऑडियो अते वीडियो, रेडियो, धार्मिक वॉल हैंगिंग्स, शस्त्र, ककार, म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट्स जिवें ढोल, हारमोनियम, तबला, तुम्बी अते हर तरह दे पूजा दे समान दी जानकारी लई कॉल करो 403-768-1681 403-768-1681। इना दा पता नोट करो, यूनिट नंबर 1120 4150 109th एवेन्यू नॉर्थ ईस्ट कैलगरी। प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक सुंदर लंबर इंडस्ट्रीज दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। इना तो तुसी फुल हाउस लंबर पैकेज, बेसमेंट ते गैराज मटेरियल दे नाल नाल सीटर ते फेंस दे समान बारे कोई भी जानकारी लैण लई 403-433-5555 यानी 403-433-5555 ते संपर्क कर सकदे हो। सुंदर लंबर इंडस्ट्रीज दा पता है 3501 23rd स्ट्रीट नॉर्थ ईस्ट कैलगरी।

0: कैलगरी विच 24 घंटे 7 दिन चलन वाले
1: पंजाबी रेडियो 102.7 एफएम वालों हर रोज शब्द कीर्तन धार्मिक कथा ढाडी वारां तो इलावा होर भी बहुत सारे धार्मिक प्रोग्राम प्रसारित किए जाते ने जिन्हां च स्टूडियो दे नंबर उत्ते कॉल करके तुसी भी हिस्सा ले सकते हो।
0: प्रोग्रामा संबंधी या सहयोग लई किसी भी तरह की जानकारी लेने लई तुसी फोन कर सकते हो। फोन नंबर है 403-238-6667।
1: होर जानकारी लई विजिट करो punjabiradio.ca। प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक परमजीत पलाहा डेजर्डिन इंश्योरेंस एजेंट दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है।
0: इना तो किसे तरह दी इंश्योरेंस जिवें लाइफ डिसेबिलिटी ऑटो होम मोटरबाइक बोट अते होर बिजनेस इंश्योरेंस बारे जानकारी लैण लई तुसी परमजीत पलाहा जी नूं 403-554-4444
1: यानी 403-554-4444 ते संपर्क कर सकदे हो। परमजीत पलाहा जी दे ऑफिस दा पता है यूनिट नंबर 210 2323 32nd Avenue North East Calgary।

प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक सुंदर लंबर इंडस्ट्रीज दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। इना तो तुसी फुल हाउस लंबर पैकेज, बेसमेंट ते गराज मटेरियल दे नाल नाल सीडर ते फेंस ते सामान बारे कोई भी जानकारी लैण लई 403-433-5555 जा फिर 403-717-3899 ते संपर्क कर सकते हो। सुंदर लंबर इंडस्ट्रीज दा पता है 3501 23rd Street, North East, Calgary।

प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक फर्स्ट चॉइस लाइटिंग प्लंबिंग ते इलेक्ट्रिकल दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। फर्स्ट चॉइस लाइटिंग एंड प्लंबिंग दा फोन नंबर 403-457-1457 यानी 403-457-1457। इना दे शोरूम दा पता है यूनिट नंबर 2121 51 52 एवेन्यू नॉर्थ ईस्ट कैलगरी कॉमनवेल्थ हाल दे बिल्कुल नेड़े।

प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक HMP कस्टम कैबिनेट्स दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। इन्हां तो किसी भी तरह दे कस्टम किचन, बार्स, वॉशरूम, वैनिटी, क्लोज़ेट अते कमर्शियल मिल वर्क बारे कोई भी जानकारी लेण लई तुसी पॉल सेखों जी नूं 403-829-5000 या फिर 403-701-4947 ते संपर्क कर सकदे हो। HMP कस्टम कैबिनेट्स लिमिटेड दा पता है, यूनिट नंबर 11, 2316 स्थाई एवेन्यू नॉर्थ ईस्ट कैलगरी।

0: प्रोग्राम का यह हिस्सा तुहाडे तक परमजीत पलाहा डीजार्डिन इंश्योरेंस एजेंट के सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है।
1: इना तो किसी तरह की इंश्योरेंस जिवें लाइफ डिसेबिलिटी ऑटो होम मोटरबाइक बोट अते होर बिजनेस इंश्योरेंस बारे जानकारी लैण लई तुसी

प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक कैसिडी हे इंजरी लॉ तों तारा कैसिडी जी दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। इना तों किसी भी तरह दे मोटर व्हीकल एक्सीडेंट इंजरी क्लेम बारे कोई भी जानकारी लैण लई तुसी तारा कैसिडी जी नूं 403-770-1099 यानी 403-777-1099 ते संपर्क कर सकते हो। कैसिडी हे इंजरी ला दा पता है, यूनिट नंबर 1507, 14 एवेन्यू साउथ वेस्ट कैलगरी।

कैलगरीज 24 घंटे सत्तो दिन प्रसारित होने वाले इको एक पंजाबी धार्मिक रेडियो 102.7 एफएम ते हर हफ्ते सोमवार तो शुक्रवार शाम 6 बजे तो 8 बजे तक तुसी सुनदे हो गुरबाणी विचार प्रोग्राम पंजाबी रेडियो कैलगरी दे होस्ट प्रोफेसर मनजीत सिंह प्यासा द्वारा।

प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक मालवा टायर्स एंड सर्विसेज दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। ए 24 घंटे 7 दिन मोबाइल सर्विसेज प्रदान करदे ने। इना तो किसी भी तरह दे नवे ते पुराने ट्रक एंड ट्रेलर टायर्स, व्हील बैलेंस एंड अलाइनमेंट, टायर रोटेशन एंड रिपेयर्स दिया सेवावां लैण लई तुसी मालवा टायर्स नूं 403-899-1985 जां फिर 403-899-1984 ते संपर्क कर सकते हो। मालवा टायर्स एंड सर्विसेज दा पता है, बिल्डिंग नंबर 8616, 44th स्ट्रीट, साउथ ईस्ट, कैलगरी।

प्रोग्राम दा यह हिस्सा तुहाडे तक सुंदर बिल्डिंग एंड सप्लाईज दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। इना तो किसी भी तरह दे ड्राई वॉल, रूफिंग, इंसुलेशन दे नाल नाल किसी भी प्रकार दे कस्टम मेटल, मिटन साइडिंग दे सामान बारे कोई भी जानकारी लैण लई तुसी अज ही निर्वैर जौहल जी नूं 403-690-8700 यानी 403-690-8700 या फिर भजन सिंह जौहल जी नूं 403-561-0227 यानी 403-561-0227 ते संपर्क कर सकते हो। सुंदर बिल्डिंग एंड सप्लाईज लिमिटेड दे ऑफिस दा पता है यूनिट नंबर 4612 6th स्ट्रीट नॉर्थ ईस्ट कैलगरी।

कैलगरी 24 घंटे 7 दिन चलन वाला इको एक पंजाबी धार्मिक रेडियो पंजाबी रेडियो 102.7 FM धार्मिक प्रोग्रामा दा आनंद मानने लई आज ही अपने करा ते कारा दी रेडियो नू पंजाबी रेडियो 102.7 FM ते ट्यून करो पंजाबी रेडियो।

प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक सुंदर लंबर इंडस्ट्रीज दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। इना तो तुसी फुल हाउस लंबर पैकेज, बेसमेंट ते गराज मटेरियल दे नाल नाल सीडर ते फेंस ते समान बारे कोई भी जानकारी लैण लई 403-433-5555 जा फिर 403-717-3899 ते संपर्क कर सकते हो। सुंदर लंबर इंडस्ट्रीज दा पता है 3501 23rd स्ट्रीट नॉर्थ ईस्ट कैलगरी।

कैलगरी 24 घंटे 7 दिन चलन वाला इको एक पंजाबी धार्मिक रेडियो पंजाबी रेडियो 102.7 FM धार्मिक प्रोग्रामा दा आनंद मानन ले आज ही अपने करा ते कारा दी रेडियो नू पंजाबी रेडियो 102.7 FM ते ट्यून करो पंजाबी रेडियो।

प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक पंजाब इंश्योरेंस दे हरपिंदर सिंह सिद्धू दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। इना तो किसी भी तरह दी लाइफ इंश्योरेंस जां विजिटर इंश्योरेंस बारे कोई भी जानकारी लैण लई तुसी हरपिंदर सिद्धू जी नूं 403-404-3500 यानी 403-404-3500 ते संपर्क कर सकते हो। पंजाब इंश्योरेंस तो हरपिंदर सिंह सिद्धू।

0: कैलगरी विच 24 घंटे सत्तो दिन चलन वाले
1: पंजाबी रेडियो 102.7 FM वालों हर रोज शब्द कीर्तन धार्मिक कथा ढाडी वारा तो इलावा होर भी बहुत सारे धार्मिक प्रोग्राम प्रसारित किए जाते ने जिन्हां च स्टूडियो दे नंबर उत्ते कॉल करके तुसी भी हिस्सा ले सकते हो।
0: प्रोग्रामा संबंधी या सहयोग ले किसी भी तरह की जानकारी लेने ले तुसी फोन कर सकते हो। फोन नंबर है 403-238-4067।
1: होर जानकारी ले विजिट करो punjabiradio.ca।

प्रोग्राम दा ए हिस्सा त्वाडे तक रासा प्लेडियम दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। फैमिली डिनर, केटरिंग, स्मॉल बर्थडे पार्टीज अति होर जानकारी लई कॉल करो 403-454-0347 403-454-0347 रासा प्लेडियम दा पता है 202 17th एवेन्यू साउथ ईस्ट कैलगरी नियर

प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक मालवा टायर्स एंड सर्विसेज दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। ए 24 घंटे सत्तो दिन मोबाइल सर्विसेज प्रदान करदे ने। इना तो किसी भी तरह दे नवे ते पुराने ट्रक एंड ट्रेलर टायर्स, व्हील बैलेंस एंड अलाइनमेंट्स, टायर रोटेशन एंड रिपेयर्स दीयां सेवावां लैण लई तुसी मालवा टायर्स नूं 403-899-1985 जां फिर 403-899-1984 ते संपर्क कर सकते हो। मालवा टायर्स एंड सर्विसेज दा पता है, बिल्डिंग नंबर 8616, 44th स्ट्रीट, साउथ ईस्ट, कैलगरी।

0: कैलगरी विच 24 घंटे 7 दिन चलन वाले
1: पंजाबी रेडियो 102.7 FM वालों हर रोज शब्द कीर्तन धार्मिक कथा ढाडी वारा तो इलावा होर भी बहुत सारे धार्मिक प्रोग्राम प्रसारित किए जाते ने जिन्हां च स्टूडियो दे नंबर उत्ते कॉल करके तुसी भी हिस्सा ले सकते हो।
0: प्रोग्रामा संबंधी या सहयोग ले किसी भी तरह की जानकारी लेन ले तुसी फोन कर सकते हो। फोन नंबर है 403-238-4067।
1: होर जानकारी ले विजिट करो punjabiradio.ca।

0: प्रोग्राम का यह हिस्सा तुहाडे तक परमजीत पलाहा डिजर्डिन इंश्योरेंस एजेंट दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है।
1: इना तो किसी तरह दी इंश्योरेंस जिवें लाइफ डिसेबिलिटी ऑटो होम मोटरबाइक बोट अते होर बिजनेस इंश्योरेंस बारे जानकारी लैण लई तुसी परमजीत पलाहा जी नूं 403-554-4444
0: यानी 403-554-4444 ते संपर्क कर सकते हो। परमजीत पलाहा जी दे ऑफिस दा पता है यूनिट नंबर 210-2332 32nd Avenue North East Calgary। प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक कैसिडी हे इंजरी लॉ तों तारा कैसिडी जी दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। इना तों किसी भी तरह दे मोटर व्हीकल एक्सीडेंट इंजरी क्लेम बारे कोई भी जानकारी लैण लई तुसी तारा कैसिडी जी नूं 403-770-1099 यानी 403-777-1099 ते संपर्क कर सकते हो। कैसिडी हे इंजरी ला दा पता है यूनिट नंबर 1507 14 एवेन्यू साउथ वेस्ट कैलगरी।

0: कैलगरी विच 24 घंटे 7 दिन चलन वाले
1: पंजाबी रेडियो 102.7 एफएम वालों हर रोज शब्द कीर्तन धार्मिक कथा ढाडी वारा तो इलावा और भी बहुत सारे धार्मिक प्रोग्राम प्रसारित किए जाते ने जिन्हां स्टूडियो दे नंबर उत्ते कॉल करके तुसी भी हिस्सा ले सकते हो।
0: प्रोग्रामा संबंधी या सहयोग ले किसी भी तरह की जानकारी लेने ले तुसी फोन कर सकते हो। फोन नंबर है 403-238-4067 403-238-6667।
1: और जानकारी ले विजिट करो punjabiradio.ca।

प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक रियो बैंकुएट हाल दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। इना तो किसी भी तरह दे ब्याह शादी दे प्रोग्राम, बर्थडे पार्टी जां होर फंक्शन संबंधी हाल बुक करन दी जानकारी लैण लई तुसी रियो बैंकुएट हाल नूं 403-633-2000 यानी 403-633-2000 ते संपर्क कर सकते हो। रियो बैंकुएट हॉल का पता है, यूनिट नंबर 2850, होपवेल प्लेस, नॉर्थ ईस्ट कैलगरी।

0: श्री दरबार साहब अमृतसर तो गुरबाणी कीर्तन दे सरवण ले आज ही अपनी आकारा ते करां दे रेडियो पंजाबी रेडियो 102.7 एफएम ते ट्यून करो। श्री दरबार साहब अमृतसर तो प्रसारित गुरबाणी कीर्तन हर रोज सवेरे 4 तो 8 बजे तक ते शाम 5 तो 6 बजे तक रिले कीते जांदे ने। पंजाबी रेडियो 102.7 एफएम कैलगरी विच इको एक पंजाबी धार्मिक रेडियो है।
1: ज्यादा जानकारी लई कॉल कर सकते हो, फोन नंबर है 403-238-6060 या विजिट करो www.radio.com।

जग रोग है दारू पीस माहे, कृपा कर जे अपनी ता गुरु का शब्द कमाहे। नानक कहे सुनो जन हो, इत संजम दुख जाए पौड़ से किति संतोख। जिनी सचो साच पे आया उन्हें मंद पै न रखियो, हर सुरेत धर्म कमाया उन्हें दुनिया तोड़े बंदना।

0: हर इके हर इके।
1: श्लोक महला पहला। पुरखा बिरखा तीर्था तटा मेगा खेता दीपा लोआ मंडला खंडावर पंडा अंडज जेर जे उपजा खाड़े सेत जाहा सो मिल जाने नानका सरा मेरा जनता नानक जंत पाए कै संभाले सबना हा जिन करते करना किया चिंता भी करनी ताहा सो करता चिंता करे जिन पाया जग तिस जोहारी स्वस्थ तिस तिस दी बाण अपग नानक सच्चे नाम बिन क्या टिका क्या टक महला पहला।
2: लख ने क्या चंगियां लख ना परवान लख तो पुपटी था सहज जोग विवान लख सुरत संग्राम रण में छुटे प्राण लख सुती लग गया ध्यान।

0: हर भगत भंडारा भंडारा।
1: श्लोक महला पहला। कूड़ राजा कूड़ प्रजा कूड़ सब संसार कूड़ मंडप कूड़ माणी कूड़ बैसनहार कूड़ सोना कूड़ रूपा कूड़ पैरनहार कूड़ काया कूड़ कपड़ कूड़ रूप पार कूड़ मिया कूड़ बीबी खबार कूड़ कूड़े नेहु लगा विसरया करतार किस नाल की चेर।

0: जासुताम न होई, तू करता करना मैं नाही जाहुकरी ना होई। बलहारी कुदरत वसिया तेरा अंत न जाई लख्या रहा, जात मह जोत जोत मह जाता अकल कला भरपूर रहया। तू सच्चा साहिब सिफत सवालियो, जिन की तिसो पार पया, कहो नानक ते किया बाता, जो कुछ करना सो कर रहया महला दूजा।
1: जोग सदंग ज्ञान सदंग बे सदंग ब्राह्मण खत्री सदंग तू सदंग शुद्ध सदंग प्राकृत है, सर्व सदंग एक सदंग जे को जाने पे, नानक ताका दास है सोई निरंजन देव।

सुख देख, गर्व सुख पायो, हुती जो प्यास पीयूष पवन की, वंचित सिद्ध का विद मिलायो। पूर्ण पाओ मन ठोर बसो, रस बासन स्यो जो दैंद सतायो। गोबिंद वाल गोबिंद पुरी सम, जलहन तीर विपास बनायो। गयो दुख दूर बरखण को सो।

0: जिस देख चरण अगन हरे ओ निसबासुर एक समान त्यान सो नाम सुने सुत पांडरे ओ पन दास वास जगत गुरु की पारस पेट परस करे ओ रामदास गुरु हर सत कियो समरथ गुरु सिर हाथ तरे ओ। तू सतगुरु चौ जुगी आप आपे परमेश्वर सुर नर साधक सिद्ध सिख सेवंत तुरे तुर आद जुगाद अनाद कला धारी त्रिलो अगम निगम उदरण जरा जमे अरो गुर अमरदास तेरे थप्पयो परगामी तारण तरन अग अंतक बदे न सल कव गुर रामदास तेरी शरण अग अंतक बदे न सल कव गुर रामदास तेरी शरण।
1: वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे जियो कवल नैन मधुर बैन कोट सैन संग सो कहत माज सोद जिसे दही पात खाए जियो देख रूप अत अनूप मोह महा मग पई तिनकनी सबद चनतकार खेल पाए जियो काल कलम हुकम हाथ कहो कौन मेट सके ईश्वर ज्ञान ध्यान तरत ही है चाहे जियो सत सात श्री निवास आद पुरख सदा तू ही वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे जियो।
2: राम नाम परम धाम शुद्ध बुद्ध निरेकार बेसुमार सरबर को कहे जियो सुथर चित भगत हित भेख तरियो हर नक्ष हरियो नक विदार जियो शंख चक्र गदा पदम आप कियो छदम अपरंपर पार ब्रह्म लखे कौनता है जियो सत सच श्रीनिवास।

0: सोठे गुर अर्जुन पुरख प्रमाण पार्थो चाले नहीं नेजा नाम निशान सत गुर शब्द सवारयो।
1: पवजन सायर सेठ नाम हरि का बोहिथा तुम सतगुर संग देत हर हर नाम जाग उदरयो।
2: जगत उधारन नाम सतगुर तुठे पायो अब नाहे अवर सर काम बारंतर पूरी पड़ी हम।

0: श्लोक महला पहला। नारक में शरीर का एक रथ हो, जुग जुग फेर वटाइए ज्ञानी बुझेता ही, सतयुग संतों का धर्म ग्रथवा हो। का जो रगिरथवा हूँ, द्वापर रतपे का सत गिरथवा हूँ, कल जुग रथ गण का उड़ गिरथवा हूँ। महला पहला।
1: शाम कह से तम स्वामी सच में अच्छे साथ रहे, सबको सच समावे। ऋग कह रहे परपू राम नाम देवा मैसू, नाय लय प्राच जाय नानक तो मुखंतर पाहे। जुज में जो छली चंद्रावल कान किसन जाद में पाया, पार जात गोपी ले आया वृंदावन में रंग किया। काल में बेद अथर्वण हुआ ना खुदाई आलो पाया, नील बसले कपड़े पैरे तुरक थानी अमल किया। चारे वेद हो सुचार पढ़े गुण तीन चार विचार, पाओ भगत कर नीच सदाए, तो नानक मुखंतर पाए पौड़ सतगुरु विटो।

0: सिमर रूप सरायरा अधि जगत मुच ओए जे आवे हे आस कर जाहि निरासे कित फल फिके फुल बक बके कम नाम है पत मिठत नीवे नानका गुण चिन्हाइया तत सब को निवे आपको पर को निवे ना कोई धरत राजू तुलिए निवे सुगवरा होए अपराधी दुणा निवे जो हंता मिर्गाही शीश निवाया क्या थी है जार दे कुसुदे जाहे महला पहला
1: पढ़ पुस्तक संध्या बाद इन सिलकु जिस वक्त समाज मुक्त चूर पे पुखण सारं त्रै पाल तिहाल बिचारं गल माला तिलक लाटंग दे तोते बसरक पाटंग जे जान से ब्रह्मंग कर्मंग सापोक निचो कर्मंग कहो नानक निचो त्यावे बिन सतगुरु वाट न पावे पौड़ी।

0: बलवंत नानक गुरु चरण लागी साजे हनहर तू रे।
1: बोल देवा हे गुरु, एक ओंकार वाहे गुरु जी की फतेह। श्री भगवती जी सहाय वार, श्री भगवती जी के पातशाह दसवी प्रथम भगवती सिमरका गुरु नानक लय त्याय। फिर अंगद गुर ते अमरदास रामदास होय सहाय। अर्जन हर गोबिंद नौ सिमरो श्री हर राय। श्री हर कृष्ण ते आईया जस डठ सब दुख जाय। तेग बहादुर सिमरिया कर नौ निध आवे ताय। सब थाई होए सहाय दसवें पातशाह श्री गुरु गोबिंद सिंह साहिब जी। सब थाई होए सहाय दसा पातशाहियां दी जोत। श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी दे पाठ दीदार दा ध्यान धर के बोलो जी वाहे गुरु। बोलो जी पंजा प्यारियां सोह साहिबजादियां चालियां मुकटियां हठियां जापियां तपियां जिन्ना नाम जपिया वंड सगया। देग चलाई तेग वाही देख के अनडिट कीता। तिना प्यारियां सचियारियां दी कमाई दा ध्यान धर के खालसा जी बोलो जी वाहे गुरु। बोलो जी जिन्ना सिंगा सिंगड़ियां ने धर्म हेत शीस दिते बंद बंद कटाए। खोपरियां लोहाइयां चरखड़ियां ते चढ़े आरियां नाल चराए गए। गुरद्वारियां दी सेवा लई कुर्बानियां कीतियां धर्म नहीं हारिया। सिखी केसा सवासा नाल निभाही तिन्हां दी कमाई दा ध्यान धर के खालसा जी बोलो जी वाहे गुरु। बोलो जी पंजा तख्तां सरबत गुरद्वारियां दा ध्यान धर के बोलो जी वाहे गुरु। बोलो जी प्रथम सरबत खालसा जी की अरदास है जी। सरबत खालसा जी को वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु। चित आवन का सदका सर्ब सुख होवै। जहां जहां खालसा जी साहिब तहां तहां रचिया रियायत। देग तेग फतेह बिरद की पैज पंथ की जीत श्री साहिब जी सहाय। खालसे जी के बोल बाले बोलो जी वाहे गुरु। बोलो जी सिखा नू सिखी दान केस दान रहत दान बबेक दान वसाहा दान पुरुषा दान दाना सिर दान नाम दान। श्री अमृत सर साहिब जी दे दर्शन इशनान। चौंकियां झंडे बोंगे जुग जुग अटल धर्म का जयकार। बोलो जी वाहे गुरु। बोलो जी सिखां दा मन नीमा मत उच्ची मत पत दा राखा आप वाहे गुरु। हे अकाल पुरख अपने पंथ दे सदा सहाई दतार जियो। श्री ननकाना साहिब अते होर गुरद्वारियां गुरधामां दे जिन्ना तो पंथ नूं विछोड़िया गया है। खुले दर्शन दीदार ते सेवा संभाल दा दान। खालसा जी नूं बख्शो हे नमानियां दे मान नतानियां दे तान। ਨਿਓਟਿਆਂ ਦੀ ਓਟਾ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀਓ, ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਅਸਥਾਨ ਸੱਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਵਿਖੇ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਤਿਗੁਰ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀਓ ਮਹਾਰਾਜ, ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਹਜ਼ੂਰ ਸਬਦ ਚੌਂਕੇ ਆਨੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕੀ ਅਰਦਾਸ। ਭੁੱਲ ਚੁੱਕ ਮੁਆਫ ਕਰਨੀ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀਓ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕੜਾਹ ਪ੍ਰਸਾਦ ਭੇਟਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਤਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਸਮੂਹ ਸੰਗਤ ਅਤੇ ਟਹਿਲੀਆਂ ਦੀ ਅਰਦਾਸ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀਓ ਸਰਬੱਤ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦਰੋਂ ਘਰੋਂ ਸਿੱਖੀ ਸਿਦਕ ਭਰੋਸਾ ਨਾਮ ਦਾਨ ਬਖਸ਼ਨਾ, ਸੁਭ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ। ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਹਜ਼ੂਰ ਕੜਾਹ ਪ੍ਰਸਾਦ ਦੀ ਦੇਗ ਹਾਜ਼ਰ ਹੈ, ਦਰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋਵੇ। ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋਇਆ ਪ੍ਰਸਾਦ, ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਵਰਤਾਉਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਬਖਸ਼ੋ। ਸੁਖ ਹੋਵੇ ਨਾਮ ਚਿੱਤ ਆਵੇ, ਸਿੱਖ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸੁਣਦੇ ਸਰਬੱਤ ਲਾਹੇ ਬੰਦ ਹੋਵਨ। ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ, ਤੇਰੇ ਭਾਣੇ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ

0: दया कपा संतोख सूत जत गंडी सतवट एह जनेव जी का हित पांडे कत ना एह टुटे ना मन लगे ना एह जले ना जाए धन सुमान स्नान का जोगल चले पाए चौकुण मुलनाया बे चौके पाया सिखा कन चढ़ाइया गुर ब्राह्मण थिया ओह मुआ ओह चढ़ पाया वे तगा गया महला पहला
1: लख चोरियां लख जानियां लख।

0: गौ ब्राह्मण को कल्लाब हो को व्रत न जाए तोती टिका दे जप माली ताण मिले शाखाए अंतर पूजा पढ़े गते बा संज मुर्का पाई छोटी ले पाखंडा नाम ले है जाहे त्रंदा महला पहला
1: मांस खाने करने वा छुरी बगान तिंगल ताक तिनकर ब्राह्मण पूरे नाथ होना पे आवे ओई साज कूड़ी रास कूड़ा व्यापार कूड़ बोल करे आहार सरम तरम का डेरा दू नानक रहया परपू मथा टिका तिर तोती का खाई हाथ छुरी जगत का सा नील बस्तर पैर प्रामले ताले पूजे प्राण अपाखिया का कुठा बकरा खाना चौके ऊपर किसे ना जाना देखे चौका कड़ी कर ऊपर आए बैठे कूड़िया मत पिटे वे मत पिटे ए अन्या साडा पिटे तन फिटे फेड़ करे मन झूठे चुली परे न कहो नानक सच ते आई है सुच होवे ता सच पाए पौड़ी चिते अंदर सब को वेख नदरी हेठ चलाइंदा आप दे वड़ियाया आप ही कर्म कराइंदा वड़ो वड़ा वड़ मेजनी।

0: जे मोहा का कर्म है, कर्म है पितृ दे, अग्ञ बस नाड़ी है पितृ चोर करे, वडी है दलाल के मुसफी करे, नानक गे सो मिले जे खट्टे काले दे महला पहला।
1: ज्यो जोर सरनावणिया वे वारो वार, झूठे झूठा मुख वसै नित नित होए खोवार, सुचे एना आखे बहंज पिंडा तोए, सुचे से नानका जिन मन वसया सोए पड़ तु।

0: एक ने ही आस की दूजे लगे जाए, नानका सिकांडिये सदिरे समाए, चंगे चंगा कर्म ने मंदे मंदा होए, आस के नाखिये जे लिखे वरते सोई महला दूजा।
1: सलाम जवाब दो में करे मुंडो कुथा जाए, नानक दोवे कुड़िया थाए नकाई पाई पड़े।

0: आपे भांडे साजने आपे पूर्ण दे एक नी दुध समाइए एक चूल्हे रहंचड़े एक नी हाली पैसा नी कुपर अनखड़े तिना सवारे नानका जिनको नदर करे महला दूजा
1: आपे साजे करे आप जाए पे रखिया तिस विच जंतु पाए कै देखे थापो था किसनो कहिए नानका सब किच आपे आपनी वड़े क्या वड़ियाई।

देहो जन्म तुम्हार लेख कह रविदास आस लग जीवा चेर पायो दर्शन देखे बहुत जन्म बिछुड़े थे मादा एहो जन्म तुम्हारे लेख कह रविदास आस लग जीवा चेर पायो दर्शन देखे वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतह। तनाश्री भगत रविदास जी की एक ओंकार सतगुर प्रसाद हम सर दीन दयाल न तुम सर अब पति यार क्या कीजै बचनी तोर मोर मन मन जानकार।

कैलगरीज 24 घंटे 7 दिन चलन वाला इको एक पंजाबी धार्मिक रेडियो पंजाबी रेडियो 102.7 FM धार्मिक प्रोग्रामा दा आनंद मानने लई आज ही अपने करा ते कारा दी रेडियो नू पंजाबी रेडियो 102.7 FM ते ट्यून करो पंजाबी रेडियो।

0: प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक परमजीत पलाहा डेजर्डिन इंश्योरेंस एजेंट दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है।
1: इना तो किसे तरह दी इंश्योरेंस जिवें लाइफ डिसेबिलिटी ऑटो होम मोटरबाइक बोट अते होर बिजनेस इंश्योरेंस बारे जानकारी लैण लई तुसी परमजीत पलाहा जी नूं 403-554-4444
0: यानी 403-554-4444 ते संपर्क कर सकदे हो। परमजीत पलाहा जी दे ऑफिस दा पता है यूनिट नंबर 210-2332 32nd Avenue नॉर्थ ईस्ट कैलगरी।
2: प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक सुंदर लंबर इंडस्ट्रीज दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। इना तो तुसी फुल हाउस लंबर पैकेज बेसमेंट ते गैराज मटेरियल दे नाल नाल सीटर ते फेंस दे समान बारे कोई भी जानकारी लैण लई 403-433-5555 यानी 403-433-5555 ते संपर्क कर सकदे हो। सुंदर लंबर इंडस्ट्रीज का पता है 3501 23rd Street नॉर्थ ईस्ट कैलगरी। प्रोग्राम का यह हिस्सा त्वाडे तक पाठ पूजा वालियां दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। इना कोल धार्मिक ऑडियो अते वीडियो रेडियो धार्मिक वॉल हैंगिंग्स शस्त्र ककार म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट्स जिवें ढोल हारमोनियम तबला तुम्बी अते हर तरह दे पूजा दे समान दी जानकारी ले कॉल करो 403-768-1681 403-768-1681। इना दा पता नोट करो यूनिट नंबर 1120 4150 109th Avenue नॉर्थ ईस्ट कैलगरी।

आनंदपुर साहब चलिया जांदा है। शुभा शाम संगत विच बैठदा है, किसे नू पता भी नहीं लगदा भी ये राजे भीम दा वजीर है। कई दिन बीत गए, गुरु महाराज जी दे बचन सुनदा है संगत विच बैठ के। भाई नंद लाल वर्गियां दी संगत इनू प्राप्त होई ते इहदा मन बदल गया। एक दिन गुरु महाराज संगत विच बैठे उपदेश कर रहे ने, यह भी बैठा सुनदा है। मन विच सोचा सोचदा है मना, इन्हां ने कदी किसे दा बुरा नहीं सोचया, कदी किसे नू माड़ा नहीं किया। ते तू देवत्यां दी सभा विच बैठ के राक्षसां वाली बुद्धि बना ली। मन विच सोचदा है जदों गुरु महाराज समाप्ति तो बाद अपने आसन तो उठे ते देवी चंद अगे हो के महाराज जी दे चरण पकड़ ले। गरीब नवाज, मैं कोई मुसाफर नहीं, मैं ते राजे भीम दा वजीर देवी चंद हां ते तुहाडा भेद लैण वास्ते आया सी। हुण राजे भीम दे सने आ रहे ने, तू आण के सारा भेद खोल। सतगुरु, जिस मुख नाल तुहाडी बाणी पढ़दा रहा हां उस मुख नाल तुहाडी निंदिया किवें करांगा। जिन्ना कन्ना नाल तेरी सोभा सुनदा रहा हां उन्ना कन्ना नाल तुहाडी निंदिया किवें सुणांगा। अखां भर लईआं, सतगुरु जे मैं ना जावां राजा भीम बड़ी माड़ी नीति दा बंदा है, मेरे बच्चे उत्थे रहिंदे ने, मेरा परिवार उत्थे रहिंदा है। ते गुरु गोबिंद सिंह महाराज कहण लगे, देवी चंदा तेरे अखां दे हंधू दसदे ने तेरा मन बदल गया है। जे सानू अपना बना ही लिया है फिर क्यों घबरांदा है। जा तू अपने घर नू जा, हर वेले तेरे नाल हां, कदे याद करके देख लई तेरे दुखां अगे अपना सिर डा देंगे। सच ही साध संगत जी, जेदा सहब डाढ़ा होवे उनू कादा डर। सतगुरां दे चरण परस के देवी चंद अपने घर नू वापस परत गया है। इधरों राजे भीम दा दरबार सजया है, अमृत वेले तो ही वजीर मंत्री कठे होई जांदे ने, फौजां तैयार बैठिया ने। हुणे देवी चंद आएगा, सारा भेद दसेगा ते आपां सिखां दे गुरु नू पकड़ लवांगे। इन्ने नू देवी चंद दरबार विच आ के राजे भीम दे अगे खलो जांदा है। सारे इस दे मुख वल तकदे ने, हुणे बोलेगा ते सारा भेद खोल देवेगा। पर ये ते कुछ बोलदा नहीं। राजे भीम ने कहा, देवी चंदा कुछ बोलदा क्यों नहीं, चुप करके क्यों खलोता है। देवी चंद ने आख्या, की बोला, ओ गुरु सच दा गुरु है, औरंगजेब दी भी फौज मिल जावे, इंद्र देवते दी भी फौज मिल जावे, ओ गुरु एडा डाडा है किसे दे बस विच आउन वाला नहीं। जे बस विच आंदा है ते अपने भगतां दे आंदा है। राजे भीम नू बड़ा गुस्सा आया, उठ के खलो गया। देवी चंदा, तू मेरे दरबार दा नौकर होके मेरे टुकड़ियां ते पलन वाला सिफतां सिखां दे गुरु दी करदा है, परे दरबार विच मेरी नरादरी करी जांदा है। चार दिन उन्हां दे विच की रह गया तो उन्हां दा ही होके रह गया। परे दरबार विच मेरी नरादरी करी जांदा है कि मैं कुछ नहीं कर सकता, तैनू हुणे पता लग जावेगा मैं की कर सकता। महाराज जी दी सोभा इहदे कोलों सुनी ना गई, तैनू हुणे पता लग जाएगा मैं की कर सकता है। जुलादा नू बुलाया, की हुकम करदा है, इंज करो, जेड़ियां अखां नाल ए गुरु गोबिंद सिंह नू देखदा रहा है

वे मेरा हिरदा ही फट जावे। सतगुरु आखन लगे चल तू अपनी गल सुना, तेरे नाल की बीती। देवी चंद ने महाराज जी नू सारी गल सुनाई। सतगुरु बड़े अजीब गल है, जलादा ने मेरिया अखां विच सूए लाए, सूए भी किधरे नजर नहीं आए, अखां भी मेरिया ठीक ने। सतगुरु कहंदे जे सूए तैनू दिखा दईए ते पहचान लवेंगा। क्यों नहीं हजूर, जरूर पहचानांगा। ते सतगुरां ने अपना सहराणा हिलाया, दोनों सूए कढ के देवी चंद दे हत्थां ते रख दिते। ते देवी चंद हैरान हो गया, ये सूए जलादा ने कोहां दूर मेरिया अखां विच लाए सन, ते इत्थे किवें आ गए। सतगुरु कहण लगे देवी चंदा तू पूरी गल नहीं ना दसी, याद कर। तेनू सूए लगे लाउण जद तुद कीता चरण ध्यान, असा चरण अगेरे कर दिए अपना बिरद पछाण। तू मेरे चरणा दा ध्यान तर लिया, मैं अपने दोनों पैर तेरिया अखां दे मोहरे कर दिते। ते जदों देवी चंद ने सुनिया, महाराज जी दे चरण पकड़ ले, रो रो के हंजुआ दे नाल धो दिते। गरीब नवाज, इहदे नालों चंगा सी सूए मेरिया ही अखां विच लग जांदे, मेरिया ही अखां विच लग जांदे। ना देवी चंदा बैराग ना कर, हुण मेरे पैर ठीक हो जाने ने। किवें महाराज? सतगुरु कहंदे तू अपने हंजुआ दी मलम मेरे पैरां ते ला दित्ती है। सतसंगियो, पूरा गुरु मिल जावे, डाढ़ा साहब मिल जावे, भाव पूरा गुरु मिल जावे। ब्रह्म ज्ञानी बाबा नंद सिंह जी वचन करदे सन, जिन्हां दे पूर्वले कर्म चंगे होण उन्हां नू पूरा गुरु मिलदा है, जिन्हां नू पूरा गुरु मिल जावे ना फिर उन्हां नू कर्मां दी मार पैंदी है, ते ना फिर उन्हां नू दुनिया दी मार पैंदी है।

0: प्रोग्राम दा ए हिस्सा त्वाडे तक कैनेडियन स्क्रू पाइल्स दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। होम एक्सटेंशन, पैटियो डेक, प्रीकास्ट कंक्रीट स्टेप अते किसे भी तरह दी सॉफ्ट ग्राउंड जिमे गैराज फ्लोर दे स्ट्रॉन्ग अते सिक्योर बेस लई स्क्रू पाइल्स इंस्टॉल कराउण लई जसकरन बराड नू कॉल करो 403-439-7700 403-439-7700 प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक फेयर डील फर्नीचर दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। किसी भी तरह दे मॉडर्न, ट्रेडिशनल, कस्टमाइज्ड फर्नीचर दी जानकारी लई पिछले 33 सालां तों कैलगरी विच सेवावां दे रहे फेयर डील फर्नीचर नू कॉल करो 403-250-5646 403-250-5646। इना दा पता है 2023 34th स्ट्रीट नॉर्थ ईस्ट कैलगरी। प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक YYC होम केयर सर्विसेज दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। ए किसे भी उम्र तो लैके बुजुर्गां तक दी घर विच रह के संभाल करदे ने। इना दे एक्सपीरियंस्ड पंजाबी केयरगिवर्स डेली एक्टिविटीज जिवें नवाउणा, दवाई देना, अपॉइंटमेंट्स ते लैके जाना या सफाई विच मदद करदे ने। तुहानू जेब विचों कोई भी खर्चा नहीं आएगा। ए सिद्धा सरकार नू बिल करदे ने। होर जानकारी लई कॉल करो 825-760-0983 825-760-0983। प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक रासा प्लेडियम दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। फैमिली डिनर, केटरिंग, स्मॉल बर्थडे पार्टीज अते होर जानकारी लई कॉल करो 403-454-0347 403-454-0347 रासा प्लेडियम दा पता है 202 17th एवेन्यू साउथ ईस्ट कैलगरी नियर स्टैम्पेड ग्राउंड।
1: प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक पंजाब फर्नीचर्स एंड डेकोर दी सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। इना तो किसे भी तरह दे इंडियन टीक वुड मेड बेड बॉक्स, सोफे, लिविंग डाइनिंग ते बेडरूम फर्नीचर तो इलावा होम डेकोर दे सामान बारे कोई भी जानकारी लैण लई तुसी पंजाब फर्नीचर्स एंड डेकोर नू 403-798-0063 यानी 403-798-0063 ते संपर्क कर सकते हो। पंजाब फर्नीचर्स एंड डेकोर दा पता है यूनिट नंबर 2110 76 वेस्ट विंड्स क्रिसेंट नॉर्थ ईस्ट कैलगरी।

0: सत साहिब, क्या आप अपने जीवन में सुख, शांति और समाधान चाहते हैं? क्या आप नशा, पारिवारिक कलह और जीवन की परेशानियों से मुक्ति पाना चाहते हैं? तो अवश्य पढ़ें जगतगुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित अनमोल पुस्तकें ज्ञान गंगा, जीने की राह व गीता तेरा ज्ञान अमृत। ये सभी पुस्तकें पंजाबी, उर्दू, मराठी व अन्य भाषाओं में भी उपलब्ध है। ये पुस्तकें पूर्ण परमात्मा, सच्ची भक्ति विधि और मोक्ष का मार्ग सरल भाषा में समझाती हैं। लाखों लोगों ने इन्हें पढ़कर अपने जीवन में सकारात्मक बदलाव पाया है। कनाडा में ये पुस्तकें बिल्कुल निःशुल्क मंगवाने के लिए आज ही हमारी वेबसाइट jagatgururampalji.org पर जाएं या 3065818061 पर संपर्क करें।
1: प्रोग्राम का यह हिस्सा तुहाडे तक सुंदर बिल्डिंग एंड सप्लाईज दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। इना तो किसी भी तरह दे ड्राईवॉल, रूफिंग, इंसुलेशन दे नाल नाल किसी भी प्रकार दे कस्टम मेटल, मिटन साइडिंग दे सामान बारे कोई भी जानकारी लैंड लई तुसी आज ही निर्वैर जोहल जी नू 403-690-8700 यानी 403-690-8700 या फिर भजन सिंह जोहल जी नू 403-561-0227 यानी 403-561-0227 ते संपर्क कर सकते हो। सुंदर बिल्डिंग एंड सप्लाईज लिमिटेड दे ऑफिस दा पता है यूनिट नंबर 4612 6th स्ट्रीट नॉर्थ ईस्ट कैलगरी।
2: प्रोग्राम दा ए हिस्सा खालसा कलेक्शन दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। इना कोल सभ्याचारक अते धार्मिक जिवें कि गुटका साहब, गतका अते दुमाला, शस्त्र, ककार, हर प्रकार दे म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट्स, दस्तारां, छोटी बच्चियां दे सूट, सर्ब लो दे पांडे, फुलकारियां ते लोईयां वर्गियां वस्तां उपलब्ध हन। होर जानकारी लई 587-917-0807 ते कॉल करो। खालसा कलेक्शन दा पता नोट करो। सेकंड फ्लोर, यूनिट नंबर 3210-4310-104 एवेन्यू, नॉर्थ ईस्ट कैलगरी। प्रोग्राम दा ए हिस्सा एबीएम कॉलेज दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। ABM कॉलेज विच किसी भी तरह दे हेल्थ प्रोग्राम्स, बिजनेस या IT प्रोग्राम्स दी जानकारी लैन लई कॉल करो 403-719-4300 403-719-4300। होर जानकारी लई साडी वेबसाइट abmcollege.com ते विजिट करो।

0: प्रोग्राम दा एह हिस्सा तुहाडे तक एग्जोटिक एक्सटीरियर्स ग्रुप दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। किसी भी तरह दी साइडिंग, रूफिंग, सॉफ्ट फेशिया, जेम्स हार्डी, ईव स्ट्रॉफ अते स्मार्ट बोर्ड दे कम कराउण दी जानकारी लई एग्जोटिक एक्सटीरियर्स ग्रुप नू कॉल कर सकदे हो 403-710-0007 403-710-0007।
1: प्रोग्राम दा एह हिस्सा तुहाडे तक M&R रूफिंग एंड साइटिंग लिमिटेड दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। इना तो किसी भी तरह दी रूफिंग, साइडिंग, स्टुको, सॉफ्ट फेशिया, स्मार्ट रिम, फ्लैट रूफ अते रेनोवेशन बारे कोई भी जानकारी लैण लई तुसी रंजीत विर्क जी नूं 403-903-0483 यानी 403-903-0483 ते संपर्क कर सकते हो। M&R रूफिंग एंड साइडिंग लिमिटेड।
2: प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक एशिया पैसिफिक इमीग्रेशन दे मनिंदर सिंह ढिल्लो होरां दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। इना दा फोन नंबर नोट करो 403-225-1111 403-225-1111। एशिया पैसिफिक इमीग्रेशन दे मनिंदर सिंह ढिल्लो होरां दा पता नोट करो, यूनिट नंबर 144 3670 त्रेंट एवेन्यू नॉर्थ ईस्ट कैलगरी।
3: प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक पंजाब इंश्योरेंस दे हरपिंदर सिंह सिद्धू दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। इना तो किसी भी तरह दी लाइफ इंश्योरेंस जां विजिटर इंश्योरेंस बारे कोई भी जानकारी लैण लई तुसी हरपिंदर सिद्धू जी नूं 403-404-3500 यानी 403-404-3500 ते संपर्क कर सकते हो। पंजाब इंश्योरेंस तो हरपिंदर सिंह सिद्धू।

0: कैलगरी विच 24 घंटे 7 दिन चलन वाले
1: पंजाबी रेडियो 102.7 FM वालों हर रोज शब्द कीर्तन धार्मिक कथा ढाडी वारा तो इलावा होर भी बहुत सारे धार्मिक प्रोग्राम प्रसारित किए जाते ने जिन्हां च स्टूडियो दे नंबर उत्ते कॉल करके तुसी भी हिस्सा ले सकते हो।
0: प्रोग्रामा संबंधी या सहयोग ले किसी भी तरह की जानकारी लेने ले तुसी फोन कर सकते हो। फोन नंबर है 403-238-6667।
1: होर जानकारी ले विजिट करो punjabiradio.ca।
2: प्रोग्राम दा ए हिस्सा खालसा कलेक्शन दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। इना कोल सभ्याचारक अते धार्मिक जिवें कि गुटका साहब गतका अते दुमाला शस्त्र ककार हर प्रकार दे म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट्स दस्तारां छोटी बच्चियां दे सूट सरब लो दे पांडे फुलकारियां अते लोईयां वर्गियां वस्तां उपलब्ध हन। होर जानकारी लई 587-917-0807 ते कॉल करो। खालसा कलेक्शन दा पता नोट करो। सेकंड फ्लोर यूनिट नंबर 3210 4310 104 एवेन्यू नॉर्थ ईस्ट कैलगरी।
1: प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक परमजीत पलाहा डेजर्डिन इंश्योरेंस एजेंट दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है।
0: इना तो किसे तरह दी इंश्योरेंस जिवें लाइफ डिसेबिलिटी ऑटो होम मोटरबाइक बोट अते होर बिजनेस इंश्योरेंस बारे जानकारी लैण लई तुसी परमजीत पलाहा जी नूं 403-554-4444
1: यानी 403-554-4444 ते संपर्क कर सकदे हो। परमजीत पलाहा जी दे ऑफिस दा पता है यूनिट नंबर 210-3332 32nd Avenue नॉर्थ ईस्ट कैलगरी।
3: प्रोग्राम दा एह हिस्सा तुहाडे तक M&R रूफिंग एंड साइटिंग लिमिटेड दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। इना तो किसी भी तरह दी रूफिंग साइटिंग स्टुको सॉफ्ट फेशिया स्मार्ट ट्रिम फ्लैट रूफ अते रेनोवेशन बारे कोई भी जानकारी लैण लई तुसी रंजीत विर्क जी नूं 403-903-0483 यानी 403-903-0483 ते संपर्क कर सकते हो। M&R रूफिंग एंड साइडिंग लिमिटेड।
2: प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक फेयर डील फर्नीचर दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। किसी भी तरह दे मॉडर्न ट्रेडिशनल कस्टमाइज्ड फर्नीचर दी जानकारी लई पिछले 33 सालां तों कैलगरी विच सेवावां दे रहे फेयर डील फर्नीचर नूं कॉल करो 403-250-5646 403-250-5646। इना दा पता है 2023 34th Street North East कैलगरी।

आप रखियो न कर प्रगट आख सुनाया सतगुर मिले सदा मुक्त है जिन विचों मोह चुकाया उत्तम एह बीचार है जिन सच्चे स्यों चित लाया जग जीवन दाता पाया उत्तम एह बीचार है जिन सच्चे स्यों चित लाया।

0: प्रोग्राम दा ए हिस्सा त्वाडे तक कैनेडियन स्क्रू पाइल्स दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। होम एक्सटेंशन, पैटियो डेक, प्रीकास्ट कंक्रीट स्टेप अते किसी भी तरह दी सॉफ्ट ग्राउंड जिमें गैराज फ्लोर दे स्ट्रॉन्ग अते सिक्योर बेस लई स्क्रू पाइल्स इंस्टॉल कराउन लई जसकरन बराड़ नू कॉल करो 403-439-7700 403-439-7700
1: प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक पंजाब फर्नीचर्स एंड डेकोर दी सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। इना तो किसी भी तरह दे इंडियन टीक वुड मेड बेड बॉक्स, सोफे, लिविंग डाइनिंग ते बेडरूम फर्नीचर तो इलावा होम डेकोर दे सामान बारे कोई भी जानकारी लैण लई तुसी पंजाब फर्नीचर्स एंड डेकोर नू 403-798-0063 यानी 403-798-0063 ते संपर्क कर सकते हो। पंजाब फर्नीचर्स एंड डेकोर दा पता है यूनिट नंबर 2110 76 वेस्ट विंड्स क्रिसेंट नॉर्थ ईस्ट कैलगरी। प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक रियो बैंक्वेट हाल दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। इना तो किसी भी तरह दे ब्याह शादी दे प्रोग्राम, बर्थडे पार्टी जां होर फंक्शन संबंधी हाल बुक करन दी जानकारी लैण लई तुसी रियो बैंक्वेट हाल नूं 403-633-2000 यानी 403-633-2000 ते संपर्क कर सकदे हो। रियो बैंक्वेट हाल दा पता है यूनिट नंबर 2850 होपवेल प्लेस नॉर्थ ईस्ट कैलगरी। प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक HMP कस्टम कैबिनेट्स दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। इना तो किसी भी तरह दे कस्टम किचन, बार्स, वॉशरूम वैनिटी, क्लोजेट अते कमर्शियल मिल वर्क बारे कोई भी जानकारी लैण लई तुसी पॉल सेखों जी नूं 403-829-5000 या फिर 403-701-4947 ते संपर्क कर सकते हो। HMP कस्टम कैबिनेट्स लिमिटेड दा पता है यूनिट नंबर 11 2316 27 एवेन्यू नॉर्थ ईस्ट कैलगरी।

0: प्रोग्राम का यह हिस्सा तुहाडे तक परमजीत पलाहा डीजर्डिन इंश्योरेंस एजेंट के सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है।
1: इना तो किसी तरह की इंश्योरेंस जिवें लाइफ डिसेबिलिटी ऑटो होम मोटरबाइक बोट अते होर बिजनेस इंश्योरेंस बारे जानकारी लेने लई तुसी परमजीत पलाहा जी नूं 403-554-4444
0: यानी 403-554-4444 ते संपर्क कर सकते हो। परमजीत पलाहा जी दे ऑफिस दा पता है यूनिट नंबर 210 23 32nd एवेन्यू नॉर्थ ईस्ट कैलगरी। प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक रियो बैंक्वेट हॉल दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। इना तो किसी भी तरह दे ब्याह शादी दे प्रोग्राम बर्थडे पार्टी जां होर फंक्शन संबंधी हाल बुक करन दी जानकारी लैण लई तुसी रियो बैंक्वेट हॉल नूं 403-633-2000 यानी 403-633-2000 ते संपर्क कर सकते हो। रियो बैंक्वेट हॉल दा पता है यूनिट नंबर 2850 होपवेल प्लेस नॉर्थ ईस्ट कैलगरी।
2: प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक फेयर डील फर्नीचर दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। किसे भी तरह दे मॉडर्न ट्रेडिशनल कस्टमाइज्ड फर्नीचर दी जानकारी लई पिछले 33 सालां तों कैलगरी विच सेवावां दे रहे फेयर डील फर्नीचर नूं कॉल करो 403-250-5646 403-250-5646। इना दा पता है 2023 34th Street नॉर्थ ईस्ट कैलगरी। प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक एग्जोटिक एक्सटीरियर्स ग्रुप दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। किसी भी तरह दी साइडिंग रूफिंग सॉफ्ट फेशिया जेम्स हार्डी ईव स्ट्रॉफ अते स्मार्ट बोर्ड दे काम कराउण दी जानकारी लई एग्जोटिक एक्सटीरियर्स ग्रुप नूं कॉल कर सकदे हो 403-710-0007 403-710-0007। प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक रासा प्लेडियम दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। फैमिली डिनर केटरिंग स्मॉल बर्थडे पार्टीज अते होर जानकारी लई कॉल करो 403-454-0347 403-454-0347। रासा प्लेडियम दा पता है 202 17th Avenue साउथ ईस्ट कैलगरी नियर स्टैम्पेड ग्राउंड। प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक पाठ पूजा वालियां दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। इना कोल धार्मिक ऑडियो अते वीडियो रेडियो धार्मिक वॉल हैंगिंग्स शस्त्र ककार म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट्स जिवें ढोल हारमोनियम तबला तुम्बी अते हर तरह दे पूजा दे समान दी जानकारी लई कॉल करो 403-768-1681 403-768-1681। इना दा पता नोट करो यूनिट नंबर 1120-4150-109th Avenue नॉर्थ ईस्ट कैलगरी।
3: एक ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भो निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभं गुरप्रसाद आसा महला पहला वार सलोका नाल श्लोक भी मैले पहले के लिखे टुंडे असराजे की धुनी श्लोक महला पहला बलहारी गुरे अपने देवहाड़ी सदवार जिन मानस ते देवते किए करत न लागी वार मल्ला दूजा जे सौ चंदा उगवे सूरज चढ़े हजार एते चानन होंदिया गुर बिन घोर अंधार मल्ला पहला नानक गुरु ना चेतन मन अपने सोचे छुट्टे तिल बुआड़ जूं सुंजे अंदर खेत खेते अंदर छुट्टिया कौ नानक सोनाए फलिगे फुलिगे बपुड़े भी तन विच सुआव पौड़ी आपी ने आप साजो आपी ने रचो नाम दुई कुदरत साजिए करे आसन डिठो चाव दाता करता आप तू तुस देवे करे पसाव तू जानू ही सबसे दिले।

जगत गुरु बाबा गुरु नानक देव जी महाराज की अदुत्ती रचनावां दे चों एक महान अमर कलाम आप जी की पावन बाणी जिसका नाम आसा दिवार है। सियाणियों का ऐसा कहना है कि आसा राग दे जन्मदाता भी गुरु नानक देव जी महाराज ने, क्योंकि संगीत दे ग्रंथां दे च आसा ते माज राग मिलदा नहीं। लिहाजा सियाणियां दा ऐसा कहना ए दो राग गुरु नानक देव जी महाराज दी देन ने। इस राग दे सतगुरु देव जी महाराज ने जिहड़ी अपनी अगम्मी रचना उचारण कीती है उसका नां है आसा दीवार। वार ओ कलाम ओ बाणी जो जंगी तर्ज नाल उचारण कीती जांदी है, और ए कुछ सुभाविक ही ऐसा हो गया है कि वार शब्द दे अर्थ इत्थे भी जंगी ने, जंगी तर्ज दे नाल उचारण कीती हुई बाणी। हिंदुस्तान जिथे संतां महापुरशां दा देश है, उथे सूरबीर महाबली ते जोधियां दा देश भी इरे है। इस देश गाहे बगाहे जो जोधे पैदा हुंदे रहे, सूर में पैदा हुंदे रहे, ढाडी लोग जो वास्तविक किसे हद तक छंदाबंदी स्वयं करके ते सूरमे दी किसे महापुरुष दी उपमा करनी, इस तरह दे पुरशां नूं कहा जांदा सी ढाडी। ये धुन भी खुद बनांदे सन, ये तर्ज खुद अपने अंदरों पैदा करदे सन। लिहाजा आसा दीवार दे उत्ते जिहड़ी धुन चढ़ी हुई है उस धुन दा नाम है टुंडे असराजे की धुनी। एक असराज नाम दा राजा होया जो वास्तविक टुंडा सी, एक हाथ सी उसका, लेकिन एक हाथ दे होंदे आया भी उदी सूर वीरता दा सिक्का चारों पासे जमया होया सी। उदी सियाणप बड़ी दूर दराज तक फैली हुई सी, और उसने अपनी सियाणप ते अपने बाहुबल दे नाल बहुत कुछ प्राप्त कीता होया सी, और चारों पासे उसका दबदबा सी। सियाणे ढाडी लोगां ने आप दी उपमा विच, असराज दी उपमा विच जो गीत गाए ते जिस तरस दे च गाए, जिस धुन दे च गाए, उस धुन दा नाम पै गया टुंडे असराजे की धुनी। उंज गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज दे च वारां दे उपर इस तरीके दियां नौ धुनां चढ़ियां होईयां ने, जिहदे च इक ए धुन है, फिर चंद्रहाड़ा सोईयां की धुनी गावनी, लल्ला बहलीमा की धुनी गावनी, ए इत्यादिक ए धुनां ने। इक तर्ज, ऐसी तर्ज जो किसे संगीतकार दे नाल ही जुड़ के रह गई, और उस दे नाल जुड़ के रह गई जिसकी उपमा विच ओ गीत ते तर्ज उचारण कीती गई। ए धुनां गुरु अर्जन देव जी महाराज नूं इतनियां प्यारियां लगियां, इतनियां चंगियां लगियां कि आपने उन्हां धुनां नूं भी गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज दे थां दे दित्ती। गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज जिथे कविता साहित दे अदुत्ती खजाने ने, ज्ञान दे महासागर ने, उत्थे संगीत दे भी महान अथाह न मुकण वाले सागर ने। किसी भी पक्ष तों गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज नूं लईए जिंदगी दे हर मसले दा हल ते जिंदगी दे हर मसले दी पूर्णता गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज दे चों प्राप्त होंदी है। चाहे ज्ञान दे पक्ष नूं लईए, विज्ञान दे पक्ष नूं लईए, समाज दे पक्ष नूं लईए, राजनीति दे पक्ष नूं लईए, संगीत साहित ते कला दे पक्ष तों लईए, गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज हर पक्ष विच संपूर्ण ने, मुकम्मल ने। साहिब श्री गुरु नानक देव जी महाराज दीआं अगम्मी बाणियां जपजी साहब, सिद्ध गोष्ट, तुखारी बारामा, इस तरह दीआं महान बाणियां दे चों ही आप दी इक महान बाणी है आसा दीवार। इस दे च दर्शन, फिलसफा, अध्यात्मकता और भाव, इना सारे धार्मिक चिन्हां नूं गुरु नानक देव जी महाराज ने बड़े सोहणे ढंग नाल उजागर कीता है। गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज की बनी हुई मर्यादा के मुताबिक इस बाणी के उपर भी पहले
मंगला चरण है, मूल मंत्र है, लिहाजा उस दे अखरी अर्थ। एक ओंकार वो एक है जिस तो उत्पत्ति पालना ते नाश हो रहा है, वो सत स्वरूप है, उदा नाम सत है, वो कृत नहीं करता है और ऐसा करता है कि अपनी कृत देच पूरे होया है, व्यापक है। वो भय तो रहत है, वैर तो रहत है, काल तो रहत है, लेकिन कल्पना मात्र नहीं है, मूर्तिमान है। वो जन्म देच नहीं है और सुते सित अपने आप तो आप ही प्रकाशमान है। वो गुरु है ते प्रसाद, वो दया दी मूर्ति है, वो रहमत दा खजाना है। आसा महला पहला वार सलोका नाल सलोक भी महले पहले के लिखे, ए वार महले पहले लिए, ए सारी दी सारी वार जिस देच जितनिया पौड़िया ने साहिब श्री गुरु नानक देव जी महाराज दिया उचारण कीतिया हुई ने, लेकिन ए शब्द जिहड़े नाल जुड़े ने सलोक भी महले पहले के, सिर्फ पौड़ी ही गुरु नानक देव जी महाराज की उचारण कीती हुई नहीं, सलोक भी गुरु नानक देव जी महाराज के उचारण किए हुए ने। वार शुद्ध रूप दे सिर्फ पौड़िया ही ने, सलोक गुरु अर्जन देव जी महाराज ने बाद दे जोड़े ने। जेड़े जेड़े सलोक वारा दे पौड़िया नाल शमूलियत नहीं हासिल कर सके, ऐसे सलोकों नू गुरु अर्जन देव जी महाराज ने गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज के अखीर दे दर्ज करके उन्हां दा सिरलेख लिखिया, सलोक वारा तो वधीक। ओ सलोक जो वारा दे च नहीं समा सके, वारा दे नाल नहीं जोड़े जा सके। तो आसा राग दे अंदर ए वार उचारण कीती हुई है ते दित्ते हुए इस सिरलेख दे मुताबक सलोक भी पहले पातशाह जी दे ने। सलोक महला पहला प्रथम सलोक, बलहारी गुर आपने दिवहाड़ी सदवार, जिन मानस ते देवते किए करत न लागी वार। प्रथम श्लोक देच गुरु दी उपमा, गुरु दी महिमा। दरअसल मां बाप पुत नू जन्म देंदे ने, गुरु देवते नू जन्म देंदा है। मां बाप सुत नू जन्म देंदे ने, गुरु संत नू जन्म देंदा है। मां बाप भौतिक शरीर नू जन्म देंदे ने, गुरु अध्यात्मवाद नू जन्म देंदा है, रूहानी शरीर नू जन्म देंदा है। लिहाजा गुरु दी महिमा सतगुरु देव जी महाराज इंज बयान करदे ने, बलहारी गुर आपने, मैं अपने गुरु तो बलहारने जाना, सदके जाना, देवहाड़ी सदवार, एक दिन दे च मैं सैकड़े सैकड़े दफा कुर्बान जाना, सदके जाना, बलहार जाना। क्यों? इतनी गल स्पष्ट है कि जिस तो कुछ प्राप्त होवे वही प्यारा लगता है ते उस तो कुर्बान होने नू जी करता है, ते जिहड़ा कुछ खो लवे, जिहड़ा कुछ छीना चपटी करे उस तो सदके होने नू जी नहीं करता, बल्कि उन्हू स्वयं ही खत्म करने नू जी करता है। जगत देच सड़ा वैर उस दे नाल होंदा है जिहड़ा सड़े कोल कुछ खोवे, जगत दे सड़ा प्यार उस दे नाल होंदा है जिहड़ा कुछ देवे। हकीकत है गुरु परमात्मा छीना झपटी नहीं जानते, देना ही जानते। वड्डा दाता तिल ना तमाए, वो इतना वड्डा दाता है पहाड़ा जिती दौलत सुख शांति दे के भी, राई जितना भी तिनके जितना भी तमा नहीं रखता, भाव मंग नहीं रखता। तो साहिब कहंदे ने मैं सदके जाना एक दिन दे सैकड़े सैकड़े वारी उस गुरु तो जिसने जिन मानुष ते देवते किए करत न ला

बोले जांदे ने, पर नहीं, अध्यात्मिक दुनिया च ऐसा भी आख्या जांदा है कि अखां भी बोलदियां ने, और अखां दी भाषा कुछ होर है। अखां नफरत भी प्रगट करदियां ने, अखां प्यार भी प्रगट करदियां ने, अखां प्रेम भी प्रगट करदियां ने, अखां अपने विचों अमृत दियां लहरां भी छड़दियां ने, अखां विचों जहर भी उबल उबल के पैंदी है। और जैसे जैसे मनुख दा मानसिक मंडल अति सूक्ष्म आउंदा है, मनुख नूं अखां दी भाषा पढ़न दी जाच आ जांदी है, और ए अपने आप विच एक विशेष कला है। गुरु जद किसे नूं घड़दा है तो बचन राही घड़दा है, दृष्ट राही घड़दा है। बचन राही विचार शुद्ध कर देते हैं और दृष्ट राही आचार शुद्ध कर देता है। बचन राही मन बदल देता है और दृष्ट दे राही देवता बना देता, चानना दे देता, प्रकाश दे देता, नूर दे देता। तो साहब इत्थे कहंदे ने, जिन मानस ते देवते किए करत न लागी वार, रंचक मात्र भी देर नहीं लगी। उस गुरु नूं मनुखां तो देवते बनांदे होया महला दूजा। अगला श्लोक साहिब श्री गुरु अंगद देव जी महाराज का उच्चारण किया होया, जिस विच आप फरमान करते ने, जे सो चंदा उगवे सूरज चढ़े हजार, एते चानण होंदिया गुरु बिन घोर अंधार। पृथ्वी दे उत्ते दो ही महान दीपक ने जो चानना वंडदे ने, सूरज ते चंद्रमा। भौतिक पदार्थ सानू सूरज दी रोशनी नाल दिखाई देंदे ने, संसार सानू सूरज दी रोशनी नाल दिखाई देंदा है, पर निरंकार ते गुरु दी रोशनी नाल ही दिखाई देगा, गुरु दे चानने नाल ही दिखाई देगा। इंज कह लईए, गुरु एक ज्योति है, गुरु एक जोत है, गुरु एक फिलसफा है, गुरु एक नूर है, गुरु एक तन नहीं, गुरु एक महान रोशनी है, महान विचार है, महान नूर है। सूरज दा चानना बार पदार्थ दा ज्ञान दे देंदा है, उदी असलियत साडे सामने रख देंदा है। अंधकार दे ते कुछ भी नहीं पता चलता, केड़ी चीज किथे पई है और केड़ी चीज की है। इस सब कुछ दा बोध सूरज दी रोशनी दे पता चलता है, पर मैं कौन हां, मैं की हां, इते गुरु ज्योति गुरु दे चानने तो ही पता चलता है, गुरु दी रोशनी तो ही पता चलता है। पृथ्वी ते सूरज दा चानना हर वक्त नहीं आउंदा, पृथ्वी ते रात आ जांदी है, पर इतनी गल स्पष्ट है, सूरज दे हर वक्त चानना है, पर जद पृथ्वी सूरज तो कंढ कर लैंदी है तो पृथ्वी दे उस हिस्से विच अंधकार छा जांदा है। गुरु ते एक जोत है, नूर है, और उस दे विच हर वक्त ए नूर है, वो नूर हर वक्त वंड रहा है, पर जद मनुख बेमुख हो जांदा है, जद मनुख पिठ कर लैंदा है, तां उस नूर तो वांझा रह जांदा है, उस चानने तो वांझा रह जांदा है। अखां बंद कर देईए, सूरज दी रोशनी नालों संबंध टुट जांदा है, ते मन मुख बन जाइए, मन दे अधीन होके चलिए, तां फिर गुरु दी रोशनी नालों गुरु दे चानने नालों भी संबंध टुट जांदा है। ये दो तरह दी रोशनी है, एक रोशनी ओ जो साडी अखां नूं मिलदी है ते पदार्थ दा उस तों बोध मिलदा है, एक रोशनी ओ जो साडे मन नूं मिलदी है ते उहदे नाल परमात्मा दा बोध मिलदा है, ईश्वर दा बोध मिलदा है। इस वास्ते साहिब कहिंदे ने, जे सो चंदा उगवे सूरज चढ़े हजार, चाहे एक चंद्रमा नहीं सैकड़े चंद्रमा आकाश दे उत्ते उतर आन, और सूरज एक नहीं हजारा सूरज आके अपनी रोशनी वंडन, पर एते चानण होंदिया गुरु बिन घोर अंधार। चाहे इतना ही चानना क्यों ना होवे, इतना ही प्रकाश क्यों ना होवे, गुरु ज्योति तो बिना अंधकार बनिया रहिंदा है, अपने आप दा पता ही नहीं चलता, मैं की हां, मैं कौन हां। बंदे नूं इस गल दा बोध ना होवे ते मनुख दी दुनिया च कितना वड्डा अंधकार है। कई दफा देखीदा है, बंदे नूं पहाड़ां दा पता है।

0: ਖੇਤਰ ਦਾ ਪਤਾ ਹੈ, ਦਰਿਆਵਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਹੈ, ਮੁਲਕਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਹੈ, ਕੌਮਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਹੈ। ਪਸ਼ੂ ਪੰਖੀਆਂ ਦਾ ਵੀ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਕੋਲ ਬੋਧ ਹੈ, ਗ੍ਰਹਿ ਨਛੱਤਰਾਂ ਦਾ ਵੀ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਕੋਲ ਬੋਧ ਹੈ, ਪਰ ਕਿਤਨੀ ਗਜ਼ਬ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਕੋਲ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦਾ ਕੋਈ ਬੋਧ ਨਹੀਂ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਦਾ ਕੋਈ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਕੌਣ ਹੈ? ਕਿਸੇ ਵਿਗਿਆਨਕ ਕੋਲ ਪੁੱਛਾਂਗੇ ਤੇ ਉਸਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜਵਾਬ ਹੋਵੇਗਾ ਉਹ ਅਧੂਰਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਇੰਜ ਕਹਿ ਲਈਏ ਉਹ ਗਲਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਪਰ ਜੇ ਕਿਸੇ ਭਗਤ ਕੋਲੋਂ ਪੁੱਛੀਏ, ਸੰਤ ਕੋਲ ਪੁੱਛੀਏ, ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਤੇ ਕਹਿਣਾ ਇਹੀ ਹੋਵੇਗਾ, ਕਹੋ ਕਬੀਰ ਇਹ ਰਾਮ ਕੀ ਅੰਸ ਜਸ ਕਾਗਦ ਪਰ ਮਿਟੇ ਨ ਮਨਸ। ਮੈਂ ਤੇ ਰਾਮ ਦੀ ਅੰਸ ਹਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲ ਗਿਆ ਮੈਂ ਉਸ ਸੂਰਜ ਦੀ ਕਿਰਨ ਹਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲ ਗਿਆ ਮੈਂ ਉਸ ਸਾਗਰ ਦੀ ਲਹਿਰ ਹਾਂ। ਪਰ ਇਹ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਚਾਨਣੇ ਵਿੱਚ, ਇਸ ਦਾ ਬੋਧ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਜੋਤੀ ਨਾਲ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇੱਕ ਚੰਦਰਮਾ ਨਹੀਂ ਸੈਂਕੜੇ ਚੰਦਰਮਾ, ਇੱਕ ਸੂਰਜ ਨਹੀਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸੂਰਜ ਜੇ ਆਸਮਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ ਕੇ ਆਪਣੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਵੰਡਣ ਤਾਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦਾ ਬੋਧ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ, ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕੌਣ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਕੀ ਹਾਂ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਜੋਤੀ ਨਾਲ ਹੀ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਗੁਰੂ ਇੱਕ ਐਸਾ ਮਹਾਨ ਨੂਰ ਹੈ ਜਿਸ ਤੋਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸੂਰਜ ਕੁਰਬਾਨ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਇੱਕ ਐਸਾ ਮਹਾਨ ਚਾਨਣ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਚੰਦਰਮਾ ਤੁੱਛ ਨੇ। ਜੇ ਸੋ ਚੰਦਾ ਉਗਵੇ ਸੂਰਜ ਚੜੇ ਹਜ਼ਾਰ, ਇਹਤੇ ਚਾਨਣ ਹੁੰਦਿਆਂ ਗੁਰੂ ਬਿਨ ਘੋਰ ਅੰਧਾਰ। ਮੱਲਾ ਪਹਿਲਾ, ਨਾਨਕ ਗੁਰੂ ਨ ਚੇਤਨੇ ਮਨ ਆਪਣੇ ਸੁਚੇਤ। ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਹੱਠ, ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਅਹੰਕਾਰ ਐਸਾ ਸੋਚਣ ਤੇ ਉਸਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਸੁਚੇਤ ਹਾਂ, ਸਾਵਧਾਨ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਸਭ ਕੁਛ ਜਾਣਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਸਭ ਕੁਛ ਪਤਾ ਹੈ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਚਿੰਤਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਜੁੜਦਾ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਜੁੜਦਾ, ਮਨ ਆਪਣੇ ਸੁਚੇਤ, ਆਪਣੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਮਨੀ ਬੈਠਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਤੇ ਸੁਚੇਤ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਤੇ ਸਾਵਧਾਨ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਤੇ ਸਭ ਕੁਛ ਜਾਣਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਸਭ ਕੁਛ ਦਾ ਪਤਾ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਵਿਚਾਰ ਵਾਲਾ ਮਨੁੱਖ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਤੀਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ ਕਿ ਛੁੱਟੇ ਤਿਲ ਬੁਆੜ ਜਿਉਂ ਸੁੰਝੇ ਅੰਦਰ ਖੇਤ। ਕਿਸੇ ਸੁੰਝੇ ਖੇਤ ਦੇ ਚ ਤਿਲ ਬੁਆੜ, ਤਿਲ ਉਹ ਤਿਲ ਜਿਸ ਦੀ ਡੋਡੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਾਖ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਫਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਔਰ ਉਗਿਆ ਵੀ ਹੋਵੇ ਕਿਸੇ ਐਸੇ ਖੇਤ ਦੇ ਚ ਜੋ ਸੁੰਨਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਕੋਈ ਮਲਕੀਅਤ ਨਹੀਂ, ਜਿਸ ਦਾ ਕੋਈ ਮਾਲਕ ਨਹੀਂ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਤਿਲ ਸੁੰਨਾ ਹੈ, ਹਰ ਵਕਤ ਸੁੰਨਾਪਨ ਇਸ ਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਵੇਗਾ। ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਾਨਣੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ, ਚਾਹੇ ਇਹ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇਗਾ, ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇਗਾ, ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇਗਾ, ਇਹਨੂੰ ਸੁੰਨਾਪਨ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਵੇਗਾ, ਔਰ ਸੁੰਨਾਪਨ ਇਸ ਨੂੰ ਬੇਚੈਨ ਕਰੇਗਾ, ਦੁਖੀ ਕਰੇਗਾ। ਅਕਸਰ ਦੇਖਿਆ ਮਨੁੱਖ ਸਾਥ ਲੱਭਦਾ ਹੈ, ਮਿੱਤਰ ਦਾ ਸਾਥ, ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਸਾਥ, ਬਾਜ਼ਾਰ ਦਾ ਸਾਥ, ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਸਾਥ, ਆਖਰ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਸਭ ਕੁਛ ਦੇ ਨਾਲ ਬੈਠ ਕੇ ਰਹਿ ਕੇ ਵੀ ਮਨ ਦਾ ਸੁੰਨਾਪਨ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਇਹ ਤੇ ਉਦੋਂ ਹੀ ਦੂਰ ਹੋਵੇਗਾ ਜਦ ਇਹ ਨਿਰੰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਬੈਠੇਗਾ, ਜਦ ਇਹ ਕਰਤਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਬੈਠੇਗਾ। ਤੇ ਕਰਤਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਬੈਠਣਾ ਕੀ ਹੈ? ਕਰਤਾਰ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਬੈਠਣਾ, ਉਹਦੇ ਸਿਮਰਨ ਵਿੱਚ ਬੈਠਣਾ। ਤੋ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾਨਕ ਗੁਰੂ ਨ ਚੇਤੇ, ਗੁਰੂ ਦਾ ਤੇ ਚਿੰਤਨ ਕਰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਗੁਰੂ ਦਾ ਤੇ ਸਿਮਰਨ ਕਰਦਾ ਨਹੀਂ, ਔਰ ਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ? ਮਨ ਆਪਣੇ ਸੁਚੇਤ। ਜੈਸੇ ਜੈਸੇ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਇਹ ਸੋਚਣੀ ਵੱਧਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਸਭ ਕੁਛ ਜਾਣਦਾ, ਵੈਸੇ ਵੈਸੇ ਸਭ ਕੁਛ ਜਾਣਨ ਤੋਂ ਇਹ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਹਕੀਕਤ ਹੈ। ਜੈਸੇ ਜੈਸੇ ਇਸਦਾ ਅਹੰਕਾਰ ਵੱਧਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਪਤਾ ਹੈ, ਦਰਅਸਲ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਤੋਂ ਇਸਦਾ ਸੰਬੰਧ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੈਸੇ ਜੈਸੇ ਇਹਦੇ ਸੰਸਾਰੀ ਅਕਲ ਤੇ ਸੰਸਾਰੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਇਸ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤਾ ਗਿਆਨ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤਾ ਗਿਆਨ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ ਬਹੁਤੇ ਗਿਆਨ ਦੀ ਹੋਂਦ ਤੇ ਬਹੁਤੇ ਗਿਆਨ ਦਾ ਮਾਣ ਬਹੁਤੇ ਅਗਿਆਨ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਬਹੁਤੀ ਨਾਸਮਝੀ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮਨ ਦੇ ਸਮਝੀ ਬੈਠਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਸਭ ਕੁਛ ਜਾਣਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਸਭ ਕੁਛ ਪਤਾ ਹੈ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਚਿੰਤਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਐਸਾ ਮਨੁੱਖ ਇਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਤੀਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਕਿਸੇ ਸੁੰਨੇ ਖੇਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਤਿਲ ਜੰਮਿਆ ਹੋਵੇ ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਫਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਕਾਲਕ ਹੀ ਕਾਲਕ ਹੈ, ਬੁਆੜ ਹੈ। खेते अंदर छुटिया कहो नानक सोना। इस तरह ए तिल खेत दे छुट्टड़ है, कोई मालक नहीं है, कहो नानक सोना। उदा सौ नहीं है कोई, उसका कोई मालिक नहीं है। फलिए फुलिए बपुड़े भीतन विच सुआ। साहब कहने फलदा ते वो भी है, ऐसा नहीं कि वो तिल फलदा नहीं, फलदा है, उन्हों फुल भी लगते ने, पत्ते भी लगते ने, हवा नाल लहरांदा भी है, अपनी होंद नू प्रगट भी करता है। पर साहब कहने भीतन विच सुआ, डोडी नू तोड़ के देखिए, अंदर झाती मार के देखिए, ते अंदर राख हुंदी है, सुआ हुंदी है। गुरु तो वे मुख होया मनुख भी फली बहुत ते हुंदा है, धन करके भी फली बहुत हुंदा है, और उसका फली बहुत होना चारों पासे दिखाई भी देंदा है, वे ते बहुत फली बहुत होया। ऐसा नहीं है कि भगत फली बहुत होंदे ने, नास्तिक भी फली बहुत होंदे ने। ऐसा नहीं कि दयालु फली बहुत होंदे ने, बल्कि जालिम भी फली बहुत होंदे ने। सिर्फ ऐसा ही नहीं कि अध्यात्मिक ज्ञानी ही फली बहुत होंदे ने, महा अज्ञानी भी फली बहुत होंदे ने। और ये जरूरी नहीं कि सिर्फ देवते ही फली बहुत होंदे ने, राक्षस भी फली बहुत होंदे ने, दैत भी फली बहुत होंदे। लाजमी नहीं है कि शरीफ मनुखी फली बहुत होंदे ने, बल्कि शैतान भी फली बहुत होंदे ने। पर शैतान का फली बहुत होना, राक्षस का फली बहुत होना, नास्तिक का फली बहुत होना, इंज है। साहब कहने जैसे किसे छुट्टे तिल वह छुट्टे खेत दे, बिना मालक दे खेत दे कोई बूटा उगे है तिल दा, मालक कोई नहीं है, निखसम है। हकीकत है कि मालक ना होवे ते चिंतावां बहुत सहेल लैंदियां। पाईर सिंह ने तदी ते कह दिता है, हे ईश्वर मैं तेरे पिंजरे विच रह के ही खुश हां। क्यों? एक ते बिल्ली दा डर गया, दूजा रिजक दी चिंता, रोजी दी चिंता ए भी गई। हे ईश्वर हे परमात्मा, कितना ही चंगा होवे कि मैं तेरे हाथ दे पिंजरे विच कैद होवां, निश्चिंत हो जावां। दरअसल परमात्मा दी कैद भी एक महान स्वतंत्रता है, ते संसार दी महान स्वतंत्रता भी एक महान कैद है। हकीकत है ये गल वखरी है कि स्वतंत्रता दी प्यास मनुख दे प्राणा विच है, पर जगत दे स्वतंत्र रहिंदा होया भी मनुख कैद है। असी रोज मनुख तो सुनदे हां की करां मैं मजबूर हां, की करां मैं मजबूर हां, ते मजबूर हां ऐसा कहना इस गल दा सबूत है कि तू कैद विच है, तू गिरफ्त विच है, तू पकड़ विच है, तू स्वतंत्र नहीं। और ये मजबूरी जिंदगी दी हर थां ते प्रगट आउंदी है, किधरे समाज दे तल ते, किधरे अर्थव्यवस्था दे तल ते, किधरे राजनीतिक तल ते बंदा कह देंदा है मैं मजबूर हां, किधरे रोग दे तल ते, किधरे सोग दे तल ते मनुख कह देंदा है मैं मजबूर हां, मेरा वस नहीं चलता। और यही गल एक कैदी कह देंदा है मैं मजबूर हां पिंजरे च डकया होया। मजबूरियां अलग अलग हो सकदियां ने, ये जेलां वख वख हो सकदियां ने, लेकिन हैं सारे कैदी। मजबूरियां वख वख हो सकदियां ने, पर मजबूर सारे ही ने। पर जिहड़ा एक दफा परमात्मा की कैद दे चला जांदा है, परमात्मा दे पिंजरे की कैद दे चला जांदा है, उदी याद उदे सिमरन उदे भरोसे उदे सिदक ते उसकी होंद की कैद दे जद अपने आप नूं कोई लीन कर लैंदा है ते महान स्वतंत्रता का फल उसकी झोली विच पैंदा है। इंज कह लो जो जप तप दे नियम विच, जो महापुरशां दे बनाए हुए नियम विच अपने आप नूं गिरफ्त कर लैंदा है, सच्ची स्वतंत्रता का आनंद उही माणदा है, पूर्ण तौर ते मोक्ष का आनंद उही माणदा है। साहिब कहिंदे ने फल दे फुल दे ते नास्तिक भी ने, दुष्ट लोग भी फली बहुत आउंदे ने। सिर्फ ऐसा ही नहीं है कि शरीफ बंदे सियाणे बंदे दानी बंदे गुणवान बंदे फली बहुत आउंदे ने, नहीं, नास्तिक भी फली बहुत आउंदे ने। ऐसा नहीं कि अंब का दरख्त ही फली बहुत आउंदा है, अक दे दरख्त भी फली बहुत आउंदे ने। सिर्फ ऐसा नहीं कि अंगूरां दी शाखा नूं ही बेलां नूं ही अंगूर लगदे ने फल लगदे ने, बल्कि कंडियाली झाड़ियां नूं भी फल लगदे ने। सिर्फ ऐसा ही नहीं कि अमरूद नू ही फल लगते ने, निम नू भी फल लगते हैं, पर फर्क सिर्फ इतना है, एक नू मिठे फल लगते हैं, एक नू कौड़े फल लगते हैं। एक दे फल अमृत रस नाल भरे हुए ने, एक दे फल जहर दे नाल भरे हुए ने। लिहाजा भगत भी फली भूत होंदे ने, नास्तिक भी फली भूत होंदे ने। गुरु नू भुला के, गुरु तो दूर रह के जिहड़े फली भूत होंदे ने, साहिब कहिंदे ने उन्हां दा फली भूत होला इंज है, फलीए फुलीए बपुड़े भी तन विच सुआव। वो फलदे ने फुलदे ने, लेकिन अंदर उन्हां दे सुआ आउंदी है, गिरी नहीं आउंदी, रस नहीं आउंदा, फल नहीं आउंदा। जिवें वो छुट्टड़ तिल बुआड़ तिल उन्हूं खोलीए ते अंदर तिल नहीं है, अंदर गिरी नहीं है, राख है, वो अंदरों जले होया है। इसे तरीके नाल सी फली भूत आउंदा ते देखदे आ कईआं नूं, पर सुंदर वस्त्र पहने हुए ने, औलाद है, धन है, संपदा है, जस है, माण मर्यादा है, पर थोड़ा जिहा सीना चीर के वेखिए अंदरों जले होया है, अंदरों सड़े होया है, और इतना जले है, इतना सड़े है कि बेचैनी बाहर आके पैंदी पई है, सेक बाहर आके जो है निकलदे पए ने, प्रगट हो रहे ने। तो प्रथम ये जिहड़े श्लोक आशा दीवार दिया इन्ना महान पौड़ियां नाल जो जुड़े हुए ने, इहदे च गुरु की महिमा, गुरु की उपमा है, और गुरु नू महान ज्योति आख्या गया है। गुरु महान सूरज है, गुरु महान चंद्रमा है, जिदी रोशनी दे च अपने आप का पता चलता है, अपनी होंद का पता चलता है, अपनी कालक का पता चलता है, ते अपनी कालक नू दूर करन दी समर्था प्रदान हुंदी है गुरु ज्योति करके, गुरु बख्शिश करके, गुरु रहमत करके। गुरु नानक दे घर नू ही गुरु घर आख्या जांदा है। वख वख जिहड़ियां जगत दे संप्रदावां प्रगट होईयां उन्हां दे च गुरु नानक ने जिस संपदा नू जन्म दिता उस नू ते आख्या ही जांदा है गुरु घर। ते गुरु घर दे जो आ गया वह शिष्य हो जांदा है, वह सिख हो जांदा है, ते जिहड़ा गुरु दी विचार नू अपनी झोली च पा लैंदा है वह फिर इस ढंग नाल फली भूत आउंदा है कि फल भी मिठे। साहिब श्री गुरु नानक देव जी महाराज ने इन्हां श्लोकां दे च गुरु दी उपमा कीती है। पौड़ी दे च जो विचार है वह अगां इस प्रकार है।
1: प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक पंजाब इंश्योरेंस दे हरपिंदर सिंह सिद्धू दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। इना तो किसी भी तरह दी लाइफ इंश्योरेंस जां विजिटर इंश्योरेंस बारे कोई भी जानकारी लैण लई तुसी हरपिंदर सिद्धू जी नूं 403-404-3500 यानी 403-404-3500 ते संपर्क कर सकदे हो। पंजाब इंश्योरेंस तो हरपिंदर सिंह सिद्धू। प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक HMP कस्टम कैबिनेट्स दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। होर जानकारी ले पॉल सेखू जी नूं 403-829-5000 जां फिर 403-719-4947 ते संपर्क कर सकते हो। HMP कस्टम कैबिनेट्स लिमिटेड दा पता है यूनिट नंबर 11 2316 27 एवेन्यू नॉर्थ ईस्ट कैलगरी। प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक सुंदर बिल्डिंग एंड सप्लाईज दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। इना तो किसी भी तरह दे ड्राई वॉल, रूफिंग, इंसुलेशन दे नाल नाल किसी भी प्रकार दे कस्टम मेटल, मिटन साइडिंग दे सामान बारे कोई भी जानकारी लैण लई तुसी आज ही निर्वैर जौहल जी नूं 403-690-8700 यानी 403-690-8700 जां फिर भजन सिंह जौहल जी नूं 403-561-0227 यानी 403-561-0227 ते संपर्क कर सकते हो। सुंदर बिल्डिंग एंड सप्लाईज लिमिटेड दे ऑफिस दा पता है यूनिट नंबर 4612 6 स्ट्रीट नॉर्थ ईस्ट कैलगरी। प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक M&R रूफिंग एंड साइटिंग लिमिटेड दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। इना तो किसी भी तरह दी रूफिंग, साइडिंग, स्टुको, सॉफ्ट फिश या स्मार्ट रिम, फ्लैट रूफ अते रेनोवेशन बारे कोई भी जानकारी लैण लई तुसी रंजीत विर्क जी नू 403-903-0483 यानी 403-903-0483 ते संपर्क कर सकते हो। M&R रूफिंग एंड साइडिंग लिमिटेड। प्रोग्राम दा एह हिस्सा तुहाडे तक कैसिडी हे इंजरी लॉ तों तारा कैसिडी जी दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। इन्हां तों किसी भी तरह दे मोटर व्हीकल एक्सीडेंट इंजरी क्लेम बारे कोई भी जानकारी लैण लई तुसी तारा कैसिडी जी नूं 403-770-1099 यानी 403-777-1099 ते संपर्क कर सकते हो। कैसिडी हे इंजरी लॉ दा पता है यूनिट नंबर 1507 14 एवेन्यू साउथ वेस्ट कैलगरी।

प्रोग्राम का यह हिस्सा खालसा कलेक्शन के सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। इना कोल सभ्याचारक अते धार्मिक जिवें कि गुटका साहब, गतका अते दुमाला, शस्त्र

0: 7 403 710 0007।
1: सत साहिब, क्या आप अपने जीवन में सुख, शांति और समाधान चाहते हैं? क्या आप नशा, पारिवारिक कलह और जीवन की परेशानियों से मुक्ति पाना चाहते हैं? तो अवश्य पढ़ें जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित अनमोल पुस्तकें ज्ञान गंगा, जीने की राह व गीता तेरा ज्ञान अमृत। ये सभी पुस्तकें पंजाबी, उर्दू, मराठी व अन्य भाषाओं में भी उपलब्ध है। ये पुस्तकें पूर्ण परमात्मा, सच्ची भक्ति विधि और मोक्ष का मार्ग सरल भाषा में समझाती हैं। लाखों लोगों ने इन्हें पढ़कर अपने जीवन में सकारात्मक बदलाव पाया है। कनाडा में ये पुस्तकें बिल्कुल निःशुल्क मंगवाने के लिए आज ही हमारी वेबसाइट jagatgururampaljee.org पर जाएं या 3065818061 पर संपर्क करें।

0: प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक M&R रूफिंग एंड साइटिंग लिमिटेड दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। इना तो किसी भी तरह दी रूफिंग, साइडिंग, स्टुको, सॉफ्ट फेशिया, स्मार्ट रिम, फ्लैट रूफ अते रेनोवेशन बारे कोई भी जानकारी लैण लई तुसी रंजीत विर्क जी नू 403-903-0483 यानी 403-903-0483 ते संपर्क कर सकते हो। M&R रूफिंग एंड साइडिंग लिमिटेड।
1: प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक एशिया पैसिफिक इमीग्रेशन दे मनिंदर सिंह टिल्लो होरा दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। इना दा फोन नंबर नोट करो 403-225-1111 403-225-1111। एशिया पैसिफिक इमीग्रेशन दे मनिंदर सिंह टिल्लो होरा दा पता नोट करो, यूनिट नंबर 144 3670 त्रेंट एवेन्यू नॉर्थ ईस्ट कैलगरी।
2: प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक YYC होम केयर सर्विसेज दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। ए किसी भी उम्र तो लै के बुजुर्गां तक दी घर विच रह के संभाल करदे ने। इना दे एक्सपीरियंस्ड पंजाबी केयरगिवर्स डेली एक्टिविटीज जिवें नवाउणा, दवाई देना, अपॉइंटमेंट्स ते लै के जाना या सफाई विच मदद करदे ने। तुहानू जेब विचों कोई भी खर्चा नहीं आएगा, ए सिद्धा सरकार नू बिल करते ने। और जानकारी ले कॉल करो 825-760-0983 825-760-0983।

0: प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक मालवा टायर्स एंड सर्विसेज दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। ए 24 घंटे सत्तो दिन मोबाइल सर्विसेज प्रदान करदे ने। इना तो किसी भी तरह दे नवे ते पुराने ट्रक एंड ट्रेलर टायर्स, व्हील बैलेंस एंड अलाइनमेंट्स, टायर रोटेशन एंड रिपेयर्स दिया सेवावां लैण लई तुसी मालवा टायर्स नूं 403-899-1985 जां फिर 403-899-1984 ते संपर्क कर सकते हो। मालवा टायर्स एंड सर्विसेज दा पता है, बिल्डिंग नंबर 8616, 44th स्ट्रीट, साउथ ईस्ट, कैलगरी।
1: प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक कैनेडियन स्क्रू पाइल्स दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। होम एक्सटेंशन, पैटियो डेक, प्रीकास्ट कंक्रीट स्टेप अते किसी भी तरह दी सॉफ्ट ग्राउंड जिमे गैराज फ्लोर दे स्ट्रॉन्ग अते सिक्योर बेस लई स्क्रू पाइल्स इंस्टॉल कराउण लई जसकरन बराड नू कॉल करो 403-439-7700 403-439-7700।

0: प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक पंजाब फर्नीचर्स एंड डेकोर दी सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। इना तो किसी भी तरह दे इंडियन टीक वुड मेड बेड बॉक्स, सोफे, लिविंग डाइनिंग ते बेडरूम फर्नीचर तो इलावा होम डेकोर दे सामान बारे कोई भी जानकारी लेने लई तुसी पंजाब फर्नीचर्स एंड डेकोर नू 403-798-0063 यानी 403-798-0063 ते संपर्क कर सकते हो। पंजाब फर्नीचर्स एंड डेकोर दा पता है यूनिट नंबर 2110 76 वेस्ट विंड्स क्रिसेंट नॉर्थ ईस्ट कैलगरी।
1: प्रोग्राम दा ए हिस्सा ABM कॉलेज दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। ABM कॉलेज विच किसी भी तरह दे हेल्थ प्रोग्राम्स, बिजनेस या IT प्रोग्राम्स दी जानकारी लेने लई कॉल करो 403-719-4300 403-719-4300। और जानकारी लई साडी वेबसाइट abmcollege.com ते विजिट करो। प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक पाठ पूजा वालियां दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। इना कोल धार्मिक ऑडियो अते वीडियो, रेडियो, धार्मिक वॉल हैंगिंग्स, शस्त्र, ककार, म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट्स जिवें ढोल, हारमोनियम, तबला, तुंबी अते हर तरह दे पूजा दे समान दी जानकारी लई कॉल करो 403-768-1681 403-768-1681। इना दा पता नोट करो, यूनिट नंबर 1120 4150 1098 एवेन्यू नॉर्थ ईस्ट कैलगरी

0: कैसिडी हे इंजरी लॉ तो तारा कैसिडी जी दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। इना तो किसी भी तरह दे मोटर व्हीकल एक्सीडेंट इंजरी क्लेम बारे कोई भी जानकारी लैण ले तुसी तारा कैसिडी जी नू 403-770-1099 यानी 403-777-1099 ते संपर्क कर सकते हो। कैसिडी हे इंजरी ला दा पता है, यूनिट नंबर 1507 14 एवेन्यू साउथ वेस्ट कैलगरी। प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक मालवा टायर्स एंड सर्विसेज दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। ए 24 घंटे 7 दिन मोबाइल सर्विसेज प्रदान करदे ने। इना तो किसी भी तरह दे नवे ते पुराने ट्रक एंड ट्रेलर टायर्स, व्हील बैलेंस एंड अलाइनमेंट्स, टायर रोटेशन एंड रिपेयर्स दीयां सेवावां लैण लई तुसी मालवा टायर्स नूं 403-899-1985 जां फिर 403-899-1984 ते संपर्क कर सकते हो। मालवा टायर्स एंड सर्विसेज दा पता है, बिल्डिंग नंबर 8616 44th स्ट्रीट साउथ ईस्ट कैलगरी।
1: प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक YYC होम केयर सर्विसेज दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। ए किसी भी उम्र तो लैके बुजुर्गां तक दी घर विच रह के संभाल करदे ने। इना दे एक्सपीरियंस्ड पंजाबी केयरगिवर्स डेली एक्टिविटीज जिवें नवाउणा, दवाई देना, अपॉइंटमेंट्स ते लैके जाना या सफाई विच मदद करदे ने। तुहानू जेब विचों कोई भी खर्चा नहीं आएगा, ए सीधा सरकार नू बिल करदे ने। होर जानकारी लई कॉल करो 825-760-0983 825-760-0983। प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक सुंदर लंबर इंडस्ट्रीज दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। इना तो तुसी फुल हाउस लंबर पैकेज, बेसमेंट ते गैराज मटेरियल दे नाल नाल सीटर ते फेंस दे समान बारे कोई भी जानकारी लैण लई 403-433-5555 यानी 403-433-5555 ते संपर्क कर सकदे हो। सुंदर लंबर इंडस्ट्रीज दा पता है 3501 23rd स्ट्रीट, नॉर्थ ईस्ट कैलगरी।
0: वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। कैलगरी च 24 घंटे 7 दिन चलन वाले इको एक धार्मिक पंजाबी रेडियो 102.7 FM तो हुण सरवण करो जी आद गुरु जुगो जुग अटल सत गुरु धन धन साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी दा सच खंड श्री हरमंदर साहिब श्री अमृतसर साहिब जी विखे होया अज अमृत वेले दा मुख वाक ते व्याख्या। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह।

सब तो वड्डी स्टेज है मंजी साहब। ते मैं अज इस धरती तो एक बेनती करनी चाहना सब नू, साडे वर्गा समर्थ गुरु ने कोई दुनिया के उत्ते व्यक्ति नहीं पैदा किया, सिख नू सर्ब कला समर्थ बनाया, सिख पातशाह है, सिख बादशाह है। बाबे ने तो इथों तक कहा सी सिखा वो तेरा लेखा धर्मराज भी नहीं पुछ सकता, तू अपने आप च सुतंत्र है, खुदा है, खालसा खुद खुदा। ते खालसा जी जे असी अपने आप च समर्थ हाँ तो सानू अज दिल्ली वाल वेखण की जरूरत है? जे असी अपने आप विच समर्थ हाँ तो सानू किसी होर धिर वाल वेखण की जरूरत है? कट्ठे होवो ते कट्ठे होवो श्री अकाल तख्त साहब की ताब्या आके, गुरु ग्रंथ ते गुरु पंथ की ताब्या आके। असी राज की गल करते हैं, असी केवल पंजाब च राज करन दी गल करदे आ। मैं दावे नाल कहिना जे आपो अपने मन की हंगता मन दे हंकार नू छड के अज भी असी श्री अकाल तख्त साहब दे उत्ते सारे कट्ठे हो जाइए ते तुसी कल्ले पंजाब दी गल करदे हो, मैं गुरु दी झूरी विच कहिना तुसी शेरे पंजाब महाराजा रणजीत वाला राज लै सकदे हो। ये ताकत दित्ती गुरु ने सानू। तो साध संगत, महाराज सचे पातशाह नू दो तलवारां धारण कराइया बाबा बुढ़ा साहब ने, मीर भाव के बादशाहत दी ते पीर भाव के भगती दी। भगती ते शक्ति धर्म ते राजनीति दा सुमेल है मीरी ते पीरी। ते बाबा बुढ़ा साहब बीड़ साहब क्यों रहिंदे सी, उहदा भी एक कारण सी भी बीड़ जंगल नू कहा जांदा है। ते उस जंगल दे इलाके विच बाबा बुढ़ा साहब जिथे सिखां नू गुरबाणी पढ़ाउंदे ने उथे गतका शस्त्र विद्या घोड़सवारी नेजेबाजी और जिन्नी भी विद्या है ना, यह जिहड़ी विद्या मीर विच आउंदी है मीरी विच आउंदी है ताकत विच शक्ति विच आउंदी है, यह सारी दा सारी अभ्यास ਇਹ ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਉਸ ਬੀੜ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਚ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਕਰਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪਾਈਆਂ ਦੋ ਤਲਵਾਰਾਂ ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਮਹਾਰਾਜ ਫਿਰ ਫੱਬ ਕੇ ਬੈਠੇ ਤਖਤ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਅੱਜ ਦਸਵੰਧ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਘੋੜਿਆਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਅੱਜ ਦਸਵੰਧ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸੋਹਣੀਆਂ ਜਵਾਨੀਆਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਅੱਜ ਦਸਵੰਧ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸ਼ਸਤਰਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ते सिख लैके आए ते जदों फिर आए ते दरबार लगन लग पिया, संगतां दी लोकां दी फरियाद सुन लग पे। महाराज चार तख्त सी इस भारत दे अंदर, कलानौर दा लाहौर दा आगरे दा दिल्ली दा, चारां तो उच्चा थड़ा कायम कीता, ए तख्त कायम कीता। ते जदों फिर सिख रोज आउंदे ने ते महाराज ने कहा हुण वीर रस हुण भगती दे नाल शक्ति की गल करनी, ढाडियां नूं बुलाओ। ढाडी बुलाए भाई नथा ते अब्दुल, ते ढाडी लियाउण लई सतगुरां ने हाथी भेजे महाराज ने। वेखो पातशाह दी साडे ते बख्शिश भी जिन्ने गुरु का जस करना, यह नहीं भी वह कंगाल जिहा होवे रुलदा फिरे मंगता जिहा बन के तुरिया फिरे, ना। गुरु आप वड्डा है, गुरु का तख्त वड्डा है, ते जिन्हें गुरु की गल करनी मेरे पातशाह ने उन्हों भी वड्डा कर दिता। सा संगत आए फिर हाथियां ते बैठ के, ते जदों इस तख्त दे उत्तों गाया ढाडी नथा ते अब्दुल लिखते ने, वो कहिंदे दो तलवारी बधियां, एक मीरी दी एक पीर दी, एक अजमत दी एक राज दी, एक राखी करे वजीर दी, हिम्मत बाहां कोट गढ़ दरवाजा बलख बखीर दी। ए बलख ते बखीर जिन्हों बुखारा भी किया जाता है, अफगानिस्तान उस इलाके दे अंदर अज ए शहर ने। ते साध संगत जी एदी उदाहरण तां दित्ती ढाडियां ने, गुरु के ढाडियां ने, भी बलख ते बुखारे दे दरवाजे जिहड़े सी ए बड़े तकड़े सन, बड़े मजबूत सन। वैसे तुसी किसे पुराने किलियां दे दरवाजे वेखियो, वो दरवाजे भी बड़े मजबूत होंदे ने, उहदे गाड़ी सूईयां लगियां सूए लगे होंदे ने, भी कोई हाथी भी इस दरवाजे

भगत रविदास जी कहिंदे हे अकाल पुरख परम पिता परमात्मा हम सर दीन मेरे वर्गा कोई दुनिया के उत्ते कंगाल नहीं है मेरे वर्गा कोई दुनिया के उत्ते निमाणा नहीं है मैं तेरे चरणा दे विच दीन होके एक बेनती कर रहा ते बेनती की है दयाल ना तुम सर कि वाहिगुरु तेरे वर्गा दुनिया ते कोई दयालु नहीं है कोई कृपालु नहीं अब पतियार क्या कीजे ते भगत जी कहिंदे ने हे रब्बा जदों मैं दीन ही बन गया तेरे अगे सरेंडर ही करता ते मैं मान लिया भी तेरे वर्गा दुनिया ते कोई दयालु नहीं ते फिर मेरी प्रीख्या क्यों लै रहा है फिर मेरी प्रतीत क्यों लै रहा है अब पतियार क्या कीजे प्रतावा भाव के प्रीख्या केडे कमाल दे बचन ऐ प्यार विच भिज के ते मन के यह कहा भी मैं मानदा भी मेरे वर्गा कोई दुनिया ते दीन नहीं कंगाल नहीं कोई मानदा सत्संगत सानू जेड़े मकसद लई अकाल पुरख ने दुनिया ते भेजिया है ना आपां रोज ही सोदर दे विच पढ़दे आं महाराज सच्चे पातशाह दीन होके ही बेनती करते हैं अज के प्रसंग नाल संबंध तो वचन है जप तप संजम धर्म ना कमाया कितने महसूस करके वेखिए ना पंगतियां नू पाठ तां रोज करदे सोदर दा कि हे अकाल पुरख जिहड़े कारज लई मैनू दुनिया ते भेजिया है ना मैं जप कर ही नहीं सकिया सिखां दा जप की है बाणी वाहिगुरु गुरमंत्र दा अभ्यास साड़ी ते शुरुआत ही जप तो हुंदी है जप जी साहब दा पूरा नाम जप है ते जी आपां सत्कार वजों लाउने महाराज कहिंदे भी ना तां असीं कोई जप कीता ना असीं कोई तप कर सके तप की है साडा साडा तप ना सिद्धां वर्गा है ना जोगियां वर्गा है साडा तप है सेवा आ लोह दे उत्ते गर्मी दे दिनां च बह के लंगर तैयार करना यह भैणां दा तप है इनू सिखी च तप कहा जाता है वर्दी गर्मी दे विच प्रशादे वरताउणे गुरु का लंगर वरताउणा सेवा करनी पैदल चल के दरबार साहब आना गुरु घर जाना किते भी यह सिखां दा तप है अपना दसवंध कढ के बच्चियां नू गुरबाणी नाल जोड़ना समय का दसवंध कढ़ना यह सिखां दा तप है ते सात संगत महाराज कहिंदे पातशाह ना असी कोई जप कीता ना असी कोई तप कीता ते संजम साडे च है कोई नहीं जे संजम होवे ते अज साडी कौम दे इहो हालात होण किते सारी गल ईगो ते खड़ी हंकार ते खड़ी ते जे किते इदां कह दईए ना कोई गल नहीं भाई मैं दीन बन जाना ते तेरे च गुण मेरे तो ज्यादे ने तू अगे हो मैं तेरिया बाहां बन के कम करांगा गल ते कोई भी नहीं सब हंकार दे सिर ते गल खड़ी मैं यह गल बड़ी बेबाकी ना कहनी चाहना साडे को श्री अकाल तख्त साहब विखे जिन्ने मसले ने यह पता नहीं किन्ने क मसले पेंडिंग ने जिहड़े गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटियां दे प्रधान बनदे ने माफ करना प्रधान बनदे हर कोई कहिंदा भी मैं प्रधान बन सेवादार कोई बनना नहीं चाहुंदा गल्लां असीं नवाब कपूर सिंह दीआं करदे आं भी उह पक्खा चल रिहा सी उधरों आ गई पग क्या जी किनू देनी है कहिंदे जी आ पक्खा झलण वाले नू दे दिओ पंथ ने कहा भी इनू दे दिओ सेवा ते जे उन्हूं यह नवाबी मिली तो सेवा चो मिली ना तो सेवा असी करदे को नहीं चौधरां सानू चाहीदियां ने महसूस करिए इस गल नू भी ईगो छड्डीए हंकार छड्डीए कख नहीं यह शरीर भी साडा नहीं है भगत कबीर जी कहिंदे मेरा मुझ में किश नहीं जो किश है सो तेरा रब्बा यह शरीर भी तेरा दिता है इहदे अंदर जोत जो तू पाई है ते जिदन तू जोत खिंच ली ना तेरा तुझको सौंपते क्या लग गया मेरा वह जिदन अपनी जोत ही तू वापस ले ली है शरीर ते मेरा कादा दावा होया ते जदों शरीर ते दावा नहीं ते फिर कादे दावे ने साडे इस करके खालसा जी हंकार नूं त्यागी संजम है नहीं साडे ते महाराज बाणी च कहिंदे ना साडे को जप ना साडे को तप ना साडे को संजम जप तप संजम धर्म ना कमाया ते जदों तिन्ने चीजां नहीं आईयां ते धर्म कित्थों आऊगा धर्म तां उहदे कोल ही आउणा ना जिहदे को जप तप ते संजम है
ਤੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਧਰਮ ਵੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਸੇਵਾ ਸਾਧ ਨਾ ਜਾਣਿਆ ਹਰ ਰਾਇਆ, ਨਾ ਅਸੀਂ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਸਾਧੂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ, ਤੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਅਸੀਂ ਕੀ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ, ਰੱਬ ਨੂੰ ਤਾਂ ਜਾਣਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਤੇ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਹਾਂ। ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਹਮ ਨੀਚ ਕਰਮਾ, ਸ਼ਰਨ ਭਰੇ ਕੀ ਰੱਖੋ ਸ਼ਰਮਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਅਸੀਂ ਨੀਚ ਕਰਮ ਕਰਦੇ, ਨੀਚ ਕਰਮ ਮੰਨਦਾ ਕੋਈ ਦੁਨੀਆਂ ਤੇ ਵੀ ਮੈਂ ਨੀਚ ਕਰਮ ਕਰਦਾ? ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਕੌਣ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਵੇ ਵੀ ਮੈਂ ਨੀਚ ਕਰਮ ਕਰਦਾ? ਨਾ, ਕਰਦੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਆ, ਪਰ ਬਾਹਰੋਂ ਸਾਫ ਸੁਥਰੇ ਆ, ਅੰਦਰੋਂ ਕਰਮ ਸਾਡੇ ਨੀਚ ਵਾਲੇ ਹੀ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਮੰਨੇ ਨੇ, ਇਹ ਗੁਰੂ ਮੰਨ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਵੇਖੋ ਕਿੱਡੀ ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਨੀਚ ਕਰਮ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੇ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਲੈ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਂਗੂ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਹਮ ਨੀਚ ਕਰਮਾ, ਸ਼ਰਨ ਭਰੇ ਕੀ ਰੱਖੋ ਸ਼ਰਮਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਤੇਰੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹਾਂ, ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਗੱਲ ਨਾ ਲਾ। ਆਪਾਂ ਤੇ ਇਸ ਘਰ 'ਚ ਰੋਜ਼ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਕੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ? ਹਮ ਅਵਗੁਣ ਭਰੇ ਏਕ ਗੁਣ ਨਾਹੀ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਾੜ ਵਿਖੇ ਵਿਖ ਖਾਈ। ਮਾਇਆ ਮੋਹ ਭਰਮ ਪੈ ਭੂਲੇ, ਸੁੱਤ ਦਾਰਾ ਸਿਓ ਪ੍ਰੀਤ ਲਗਾਈ। ਇੱਕ ਉੱਤਮ ਪੰਥ ਸੁਣਿਓ ਗੁਰ ਸੰਗਤ, ਤੇ ਮਿਲੰਤ ਜਮ ਤਰਾਸ ਮਿਟਾਈ। ਇੱਕ ਅਰਦਾਸ ਭਾਟ ਕੀਰਤ ਕੀ ਗੁਰ ਰਾਮਦਾਸ, ਰੱਖੋ ਸ਼ਰਨਾਈ। ਤੇ ਅੱਜ ਭਗਤ ਰਵਿਦਾਸ ਨੇ ਇਹੋ ਬਚਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਵਾਰ ਵਾਰ ਮੇਰੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਨਾ ਲਓ, ਮੈਂ ਦੀਨ ਹਾਂ ਤੇ ਤੇਰੇ ਵਰਗਾ ਦੁਨੀਆਂ

0: मेरा मन ता मनेगा जे तेरे बचन मेरे हिरदे च वस जाणगे। इस करके वाहिगुरु अकाल कृपा अकाल पुरख जी मेरे ते कृपा करो, मेरे ते बख्शिश करो, ए मत मैनू दे दियो भी मैं तेरा नाम जपा।
1: हाँ बल बल जाओ रमैया कारने।
0: भगत रविदास जी कहिंदे हे मेरे परमात्मा वाहिगुरु मैं तेरे तो वार नहीं जाना। हां बल बल भाव के सत वार नहीं जाना, बलिहार नहीं जाना। कारण कवन अबोल, अगे तुसी बचन सरवण करोगे तो महाराज सच्चे पातशाह कह रहे ने हों बल बल जाओ। भगत रविदास जी कहिंदे परमात्मा मैं वार वार तेरे तो सदके जाना बलिहार जाना, हों कुरबानी जाओ मेहरबाना हों कुरबानी जाओ। ते जिथे परमात्मा तो बलिहार जाते ना भगत जी उथे गुरु अर्जन देव महाराज ये भी बाणी च कहिंदे भी जिहड़ा तेरा नाम जप दे मैं उन्हां तो भी बलिहार जाना। रमैया कारने हे रमे होए परमात्मा वाहिगुरु अकाल पुरख मैं तेरे तो वार वार बलिहार जांदा हां। हे महाराज ने विश्राम दिता ते विश्राम तो पहला यह बचन भी किया कि कारण कवन अबोल के हे परमात्मा काल पुरख जी तू मेरे नाल बोल।

महाराज मैं तेरे तो बलिहार जाना, जे तू एक घड़ी वास्ते भी ना मैं विसरे। ते महाराज पातशाह बेनती करते ने, हे अकाल पुरख जी मैं तेरे तो बलिहार जाना, हो बलिहारी हो जीवा गुण गाए। बलिहारी क्यों आ? क्योंकि मैं जीवदा ही तां वा, मैं बचिया ही तां वा,

बादशाह मैं तेरी ओट लई है, मैं तेरा आसरा तकिया, कृपा कर ए शरीर पवित्र हो जावे। किवें? अपना शब्द तेरा नाम ए मेरे हिरदे विच वस।

0: प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक परमजीत पलाहा डिजर्डिन इंश्योरेंस एजेंट दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है।
1: इना तो किसे तरह दी इंश्योरेंस जिवे लाइफ डिसेबिलिटी ऑटो होम मोटरबाइक बोट अते होर बिजनेस इंश्योरेंस बारे जानकारी लैण लई तुसी परमजीत पलाहा जी नूं 403-554-4444
0: यानी 403-554-4444 ते संपर्क कर सकदे हो। परमजीत पलाहा जी दे ऑफिस दा पता है यूनिट नंबर 210-2332 32nd Avenue North East Calgary। प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक सुंदर बिल्डिंग एंड सप्लाईज दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। इना तो किसी भी तरह दे ड्राईवॉल रूफिंग इंसुलेशन दे नाल नाल किसी भी प्रकार दे कस्टम मेटल मिटन साइडिंग दे सामान बारे कोई भी जानकारी लैण लई तुसी अज ही निर्वैर जौहल जी नूं 403-690-8700 यानी 403-690-8700 जां फिर भजन सिंह जौहल जी नूं 403-561-0227 यानी 403-561-0227 ते संपर्क कर सकदे हो। सुंदर बिल्डिंग एंड सप्लाईज लिमिटेड दे ऑफिस दा पता है यूनिट नंबर 4612 6th Street, Northeast Calgary।

0: प्रोग्राम दा एह हिस्सा तुहाडे तक एग्जोटिक एक्सटीरियर्स ग्रुप दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। किसी भी तरह की साइडिंग, रूफिंग, सॉफ्ट फेशिया, जेम्स हार्डी, ईव स्ट्रॉफ अते स्मार्ट बोर्ड दे काम कराउण दी जानकारी लई एग्जोटिक एक्सटीरियर्स ग्रुप नू कॉल कर सकदे हो 403-710-0007 403-710-0007।
1: सत साहिब, क्या आप अपने जीवन में सुख, शांति और समाधान चाहते हैं? क्या आप नशा, पारिवारिक कलह और जीवन की परेशानियों से मुक्ति पाना चाहते हैं? तो अवश्य पढ़ें जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित अनमोल पुस्तकें ज्ञान गंगा, जीने की राह व गीता तेरा ज्ञान अमृत। ये सभी पुस्तकें पंजाबी, उर्दू, मराठी व अन्य भाषाओं में भी उपलब्ध है। ये पुस्तकें पूर्ण परमात्मा, सच्ची भक्ति विधि और मोक्ष का मार्ग सरल भाषा में समझाती हैं। लाखों लोगों ने इन्हें पढ़कर अपने जीवन में सकारात्मक बदलाव पाया है। कनाडा में ये पुस्तकें बिल्कुल निःशुल्क मंगवाने के लिए आज ही हमारी वेबसाइट jagatgururampaljee.org पर जाएं या 3065818061 पर संपर्क करें।
2: श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन।

प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक ट्रैवल वर्ल्ड दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। टिकटां दी किसी भी तरह दी जानकारी लैण लई तुसी अज ही ट्रैवल वर्ल्ड नूं 403-717-0771 ते यानी 403-717-0771 ते संपर्क कर सकते हो। ट्रैवल वर्ल्ड दा पूरा पता नोट करो, ग्रीन प्लाजा यूनिट नंबर 1130 4818 वेस्ट विंड ड्राइव नॉर्थ ईस्ट कैलगरी। प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक M&R रूफिंग एंड साइटिंग लिमिटेड दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। इना तो किसी भी तरह दी रूफिंग, साइडिंग, स्टुको, सॉफ्ट फेशिया, स्मार्ट ट्रिम, फ्लैट रूफ अते रेनोवेशन बारे कोई भी जानकारी लैण लई तुसी रंजीत विर्क जी नूं 403-903-0483 यानी 403-903-0483 ते संपर्क कर सकते हो। M&R रूफिंग एंड साइडिंग लिमिटेड। प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक पंजाब फर्नीचर्स एंड डेकोर दी सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। इना तो किसी भी तरह दे इंडियन टीक वुड मेड बेड बॉक्स, सोफे, लिविंग डाइनिंग ते बेडरूम फर्नीचर तो इलावा होम डेकोर दे सामान बारे कोई भी जानकारी लैण लई तुसी पंजाब फर्नीचर्स एंड डेकोर नूं 403-798-0063 यानी 403-798-0063 ते संपर्क कर सकते हो। पंजाब फर्नीचर्स एंड डेकोर दा पता है यूनिट नंबर 2110 76 वेस्ट विंड्स क्रिसेंट नॉर्थ ईस्ट कैलगरी।

0: ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਇਹ ਹਿੱਸਾ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਏਸ਼ੀਆ ਪੈਸੀਫਿਕ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਮਨਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਫੋਨ ਨੰਬਰ ਨੋਟ ਕਰੋ 403-225-1111 403-225-1111। ਏਸ਼ੀਆ ਪੈਸੀਫਿਕ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਮਨਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਹੋਰਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਨੋਟ ਕਰੋ, ਯੂਨਿਟ ਨੰਬਰ 144 3670 63 ਐਵੀਨਿਊ ਨਾਰਥ ਈਸਟ ਕੈਲਗਰੀ।
1: ਸਤ ਸਾਹਿਬ, क्या आप अपने जीवन में सुख शांति और समाधान चाहते हैं? क्या आप नशा, पारिवारिक कलह और जीवन की परेशानियों से मुक्ति पाना चाहते हैं? तो अवश्य पढ़ें जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित अनमोल पुस्तकें ज्ञान गंगा जीने की राह व गीता तेरा ज्ञान अमृत। ये सभी पुस्तकें पंजाबी, उर्दू, मराठी व अन्य भाषाओं में भी उपलब्ध है। ये पुस्तकें पूर्ण परमात्मा, सच्ची भक्ति विधि और मोक्ष का मार्ग सरल भाषा में समझाती हैं। लाखों लोगों ने इन्हें पढ़कर अपने जीवन में सकारात्मक बदलाव पाया है। कनाडा में ये पुस्तकें बिल्कुल निःशुल्क मंगवाने के लिए आज ही हमारी वेबसाइट jagatgururampalji.org पर जाएं या 3065818061 पर संपर्क करें।

0: प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक रासा प्लेडियम दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। फैमिली डिनर, केटरिंग, स्मॉल बर्थडे पार्टीज अते होर जानकारी लई कॉल करो 403-454-0347 403-454-0347 रासा प्लेडियम दा पता है 202 17th Avenue साउथ ईस्ट कैलगरी नियर स्टैंपेड ग्राउंड।
1: प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक HMP कस्टम कैबिनेट्स दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। इना तो किसी भी तरह दे कस्टम किचन, बार्स, वॉशरूम वैनिटी, क्लोजेट अते कमर्शियल मिल वर्क बारे कोई भी जानकारी लेण लई तुसी पॉल सेखों जी नूं 403-829-5000 या फिर 403-701-4947 ते संपर्क कर सकदे हो। HMP कस्टम कैबिनेट्स लिमिटेड दा पता है यूनिट नंबर 11-2316 27 एवेन्यू नॉर्थ कैलगरी।
0: प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक पाठ पूजा वालेयां दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। इना कोल धार्मिक ऑडियो अते वीडियो, रेडियो, धार्मिक वॉल हैंगिंग्स, शस्त्र, ककार, म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट्स जिवें ढोल, हारमोनियम, तबला, तुंबी अते हर तरह दे पूजा दे समान दी जानकारी लई कॉल करो 403-768-1681 403-768-1681। इना दा पता नोट करो यूनिट नंबर 1120-4150-109th Avenue नॉर्थ ईस्ट कैलगरी।

0: प्रोग्राम का यह हिस्सा तुहाडे तक परमजीत पलाहा डिजार्डिन इंश्योरेंस एजेंट के सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है।
1: इना तो किसी तरह की इंश्योरेंस जिवें लाइफ, डिसेबिलिटी, ऑटो, होम, मोटरबाइक, बोट अते होर बिजनेस इंश्योरेंस बारे जानकारी लेने लई तुसी परमजीत पलाहा जी नूं 403-554-4444
0: यानी 403-554-4444 ते संपर्क कर सकते हो। परमजीत पलाहा जी दे ऑफिस का पता है यूनिट नंबर 210-2332 32nd Avenue नॉर्थ ईस्ट कैलगरी। प्रोग्राम का यह हिस्सा तुहाडे तक कैसडी हे इंजरी लॉ तो तारा कैसडी जी दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। इना तो किसी भी तरह दे मोटर व्हीकल एक्सीडेंट इंजरी क्लेम बारे कोई भी जानकारी लैण लई तुसी तारा कैसडी जी नूं 403-770-1099 यानी 403-777-1099 ते संपर्क कर सकते हो। कैसडी हे इंजरी ला दा पता है यूनिट नंबर 1507 14 एवेन्यू साउथ वेस्ट कैलगरी।

प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक फेयर डील फर्नीचर दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। किसे भी तरह दे मॉडर्न ट्रेडिशनल कस्टमाइज्ड फर्नीचर दी जानकारी ले पिछले 33 सालां तों कैलगरी विच सेवावां दे रहे फेयर डील फर्नीचर नू कॉल करो 403-250-5640।

0: प्रोग्राम दा ए हिस्सा त्वाडे तक कैनेडियन स्क्रू पाइल्स दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। होम एक्सटेंशन, पैटियो डेक, प्रीकास्ट कंक्रीट स्टेप अते किसी भी तरह दी सॉफ्ट ग्राउंड जिमे गैराज फ्लोर दे स्ट्रॉन्ग अते सिक्योर बेस लई स्क्रू पाइल्स इंस्टॉल कराउण लई जसकरन बराड नू कॉल करो 403-439-7700 403-439-7700
1: प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक मालवा टायर्स एंड सर्विसेज दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। ए 24 घंटे 7 दिन मोबाइल सर्विसेज प्रदान करदे ने। इना तो किसी भी तरह दे नवे ते पुराने ट्रक एंड ट्रेलर टायर्स, व्हील बैलेंस एंड अलाइनमेंट्स, टायर रोटेशन एंड रिपेयर्स दीयां सेवावां लैण लई तुसीं मालवा टायर्स नूं 403-899-1985 जां फिर 403-899-1984 ते संपर्क कर सकते हो। मालवा टायर्स एंड सर्विसेज दा पता है, बिल्डिंग नंबर 8616, 44th स्ट्रीट, साउथ ईस्ट, कैलगरी।
2: असा

0: प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक रासा प्लेडियम दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। फैमिली डिनर, केटरिंग, स्मॉल बर्थडे पार्टीज अते होर जानकारी लई कॉल करो 403-454-0347 403-454-0347 रासा प्लेडियम दा पता है 202 17th Avenue साउथ ईस्ट कैलगरी नियर स्टैम्पेड ग्राउंड।
1: प्रोग्राम का यह हिस्सा तुहाडे तक रियो बैंक्वेट हाल दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। इना तो किसी भी तरह दे ब्याह शादी दे प्रोग्राम, बर्थडे पार्टी जां होर फंक्शन संबंधी हाल बुक करन दी जानकारी लैण लई तुसी रियो बैंक्वेट हाल नूं 403-633-2000 यानी 403-633-2000 ते संपर्क कर सकते हो। रियो बैंक्वेट हाल दा पता है यूनिट नंबर 2850 होपवेल प्लेस नॉर्थ ईस्ट कैलगरी।
0: प्रोग्राम दा ए हिस्सा ABM कॉलेज दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। ABM कॉलेज विच किसी भी तरह दे हेल्थ प्रोग्राम्स, बिजनेस या IT प्रोग्राम्स दी जानकारी लैण लई कॉल करो 403-719-4300 403-719-4300। और जानकारी लई साडी वेबसाइट abmcollege.com ते विजिट करो।

0: प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक पाठ पूजा वालियां दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। इना कोल धार्मिक ऑडियो अते वीडियो रेडियो धार्मिक वॉल हैंगिंग्स शस्त्र ककार म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट्स जिवें ढोल हारमोनीयम तबला तुम्बी अते हर तरह दे पूजा दे समान दी जानकारी ले कॉल करो 403-768-1681 403-768-1681। इना दा पता नोट करो, यूनिट नंबर 1120 4150 109th एवेन्यू नॉर्थ ईस्ट कैलगरी। प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक सुंदर लंबर इंडस्ट्रीज दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। इना तो तुसी फुल हाउस लंबर पैकेज बेसमेंट ते गैराज मटेरियल दे नाल नाल सीटर ते फेंस दे समान बारे कोई भी जानकारी लैण लई 403-433-5555 यानी 403-433-5555 ते संपर्क कर सकदे हो। सुंदर लंबर इंडस्ट्रीज दा पता है 3501 23rd स्ट्रीट नॉर्थ ईस्ट कैलगरी।
1: प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक एशिया पैसिफिक इमीग्रेशन दे मनिंदर सिंह ढिल्लो होरां दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। इना दा फोन नंबर नोट करो 403-225-1111 403-225-1111। एशिया पैसिफिक इमीग्रेशन दे मनिंदर सिंह ढिल्लो होरां दा पता नोट करो, यूनिट नंबर 144 3670 63 एवेन्यू नॉर्थ ईस्ट कैलगरी।

कैलगरीज 24 घंटे 7 दिन चलन वाला इको एक पंजाबी धार्मिक रेडियो पंजाबी रेडियो 102.7 FM धार्मिक प्रोग्रामा दा आनंद मानन ले आज ही अपने करा ते कारा दी रेडियो नू पंजाबी रेडियो 102.7 FM ते ट्यून करो पंजाबी रेडियो।

प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक सुंदर बिल्डिंग एंड सप्लाईज दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। इना तो किसी भी तरह दे ड्राईवॉल, रूफिंग, इंसुलेशन दे नाल नाल किसी भी प्रकार दे कस्टम मेटल मिटन साइडिंग दे सामान बारे कोई भी जानकारी लैन लई तुसी अज ही निर्वैर जौहल जी नू 403-690-8700 यानी 403-690-8700 या फिर भजन सिंह जौहल जी नू 403-561-0227 यानी 403-561-0227 ते संपर्क कर सकते हो। सुंदर बिल्डिंग एंड सप्लाईज लिमिटेड दे ऑफिस दा पता है यूनिट नंबर 4612 6th स्ट्रीट नॉर्थ ईस्ट कैलगरी। प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक M&R रूफिंग एंड साइटिंग लिमिटेड दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। इना तो किसी भी तरह दी रूफिंग साइडिंग स्टुको सॉफ्ट फेशिया स्मार्ट रिम फ्लैट रूफ अते रेनोवेशन बारे कोई भी जानकारी लैन लई तुसी रंजीत विर्क जी नू 403-903-0483 यानी 403-903-0483 ते संपर्क कर सकते हो। M&R रूफिंग एंड साइडिंग लिमिटेड।

0: प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक पंजाब फर्नीचर्स एंड डेकोर दी सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। इना तो किसी भी तरह दे इंडियन टीक वुड मेड बेड बॉक्स, सोफे, लिविंग डाइनिंग ते बेडरूम फर्नीचर तो इलावा होम डेकोर दे सामान बारे कोई भी जानकारी लैन ले तुसी पंजाब फर्नीचर्स एंड डेकोर नू 403-798-0063 यानी 403-798-0063 ते संपर्क कर सकते हो। पंजाब फर्नीचर्स एंड डेकोर दा पता है यूनिट नंबर 2110 76 वेस्ट विंड्स क्रिसेंट नॉर्थ ईस्ट कैलगरी।
1: प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक रासा प्लेडियम दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। फैमिली डिनर, केटरिंग, स्मॉल बर्थडे पार्टीज अते होर जानकारी लई कॉल करो 403-454-0347 403-454-0347 रासा प्लेडियम दा पता है 202 17th Avenue साउथ ईस्ट कैलगरी नियर स्टैम्पेड ग्राउंड।
0: प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक परमजीत पलाहा डेजर्डिन इंश्योरेंस एजेंट दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है।
2: इना तो किसे तरह दी इंश्योरेंस जिवें लाइफ, डिसेबिलिटी, ऑटो, होम, मोटरबाइक, बोट अते होर बिजनेस इंश्योरेंस बारे जानकारी लैन लई तुसी परमजीत पलाहा जी नू 403-554-4444
0: यानी 403-554-4444 ते संपर्क कर सकते हो। परमजीत पलाहा जी दे ऑफिस दा पता है यूनिट नंबर 210 2332 32nd Avenue North East Calgary।

0: प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक ट्रैवल वर्ल्ड दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। टिकटां दी किसी भी तरह दी जानकारी लैण लई तुसीं अज ही ट्रैवल वर्ल्ड नूं 403-717-0771 ते यानी 403-717-0771 ते संपर्क कर सकते हो। ट्रैवल वर्ल्ड दा पूरा पता नोट करो, ग्रीन प्लाजा यूनिट नंबर 1130 4818 वेस्ट विंड ड्राइव नॉर्थ ईस्ट कैलगरी। प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक मालवा टायर्स एंड सर्विसेज दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। ए 24 घंटे 7 दिन मोबाइल सर्विसेज प्रदान करदे ने। इना तो किसी भी तरह दे नवे ते पुराने ट्रक एंड ट्रेलर टायर्स, व्हील बैलेंस एंड अलाइनमेंट्स, टायर रोटेशन एंड रिपेयर्स दीयां सेवावां लैण लई तुसीं मालवा टायर्स नूं 403-899-1985 जां फिर 403-899-1984 ते संपर्क कर सकते हो। मालवा टायर्स एंड सर्विसेज दा पता है, बिल्डिंग नंबर 8616 44th स्ट्रीट साउथ ईस्ट कैलगरी।
1: प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक कैनेडियन स्क्रू पाइल्स दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। होम एक्सटेंशन, पैटियो डेक, प्रीकास्ट कंक्रीट स्टेप अते किसी भी तरह दी सॉफ्ट ग्राउंड जिमें गैराज फ्लोर दे स्ट्रॉन्ग अते सिक्योर बेस लई स्क्रू पाइल्स इंस्टॉल कराउण लई जसकरन बराड़ नू कॉल करो 403-439-7700 403-439-7700।

0: प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक YYC होम केयर सर्विसेज दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। ए किसी भी उम्र तो लैके बुजुर्गां तक दी घर विच रह के संभाल करदे ने। इना दे एक्सपीरियंस्ड पंजाबी केयर गिवर्स डेली एक्टिविटीज जिवें नवाउणा, दवाई देना, अपॉइंटमेंट्स ते लैके जाना या सफाई विच मदद करदे ने। तुहानू जेब विचों कोई भी खर्चा नहीं आएगा। ए सिद्धा सरकार नू बिल करते ने। होर जानकारी लई कॉल करो 825-760-0983 825-760-0983।
1: प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक कैसिडी हे इंजरी लॉ तो तारा कैसिडी जी दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। इना तो किसी भी तरह दे मोटर व्हीकल एक्सीडेंट इंजरी क्लेम बारे कोई भी जानकारी लैण लई तुसी तारा कैसिडी जी नू 403-770-1099 यानी 403-777-1099 ते संपर्क कर सकते हो। कैसिडी हे इंजरी ला दा पता है यूनिट नंबर 1507 14 एवेन्यू साउथ वेस्ट कैलगरी। प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक पंजाब इंश्योरेंस दे हरपिंदर सिंह सिद्धू दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। इना तो किसी भी तरह दी लाइफ इंश्योरेंस जां विजिटर इंश्योरेंस बारे कोई भी जानकारी लैण लई तुसी हरपिंदर सिद्धू जी नूं 403-404-3500 यानी 403-404-3500 ते संपर्क कर सकते हो। पंजाब इंश्योरेंस तो हरपिंदर सिंह सिद्धू।

0: प्रोग्राम का यह हिस्सा खालसा कलेक्शन के सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। इना कोल सभ्याचारक अते धार्मिक जिवें कि गुटका साहब, गतका अते दुमाला, शस्त्र, ककार, हर प्रकार दे म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट्स, दस्तारां, छोटी बच्चियां दे सूट, सरब लो दे पांडे, फुलकारियां ते लोईयां वर्गियां वस्तां उपलब्ध हन। होर जानकारी लई 587-917-0807 ते कॉल करो। खालसा कलेक्शन दा पता नोट करो। सेकंड फ्लोर, यूनिट नंबर 3210, 4310, 104 एवेन्यू, नॉर्थ ईस्ट, कैलगरी।
1: ए प्रोग्राम तुहाडे तक केयरिंग होम हेल्थ सॉल्यूशंस वालियां दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। विजिट केयरिंग होम हेल्थ सॉल्यूशंस, यूनिट नंबर 124-4774 वेस्ट विंस ड्राइव, नॉर्थ ईस्ट, कैलगरी। किसी भी तरह की जानकारी ले आज ही केयरिंग ते कॉल करो 403-605-6300 ते, यानी 403-605-6300 ते।
2: प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक HMP कस्टम कैबिनेट्स दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। इना तो किसी भी तरह दे कस्टम किचन, बार्स, वॉशरूम वैनिटी, क्लाजेट अते कमर्शियल मिल वर्क बारे कोई भी जानकारी लैण लई तुसी पॉल सेखों जी नूं 403-829-5000 या फिर 403-701-4947 ते संपर्क कर सकदे हो। HMP कस्टम कैबिनेट्स लिमिटेड दा पता है, यूनिट नंबर 11-2316 27 एवेन्यू, नॉर्थ ईस्ट, कैलगरी।

11 एशिया पैसिफिक इमिग्रेशन दे मनिंदर सिंह तिलोहोरा दा पता नोट करो, यूनिट नंबर 144 3670 त्रेंट एवेन्यू नॉर्थ ईस्ट कैलगरी।

0: प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक सुंदर लंबर इंडस्ट्रीज दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। इना तो तुसी फुल हाउस लंबर पैकेज, बेमेंट ते गैराज मटेरियल दे नाल नाल सीटर ते फेंस दे समान बारे कोई भी जानकारी लैण लई 403-433-5555 यानी 403-433-5555 ते संपर्क कर सकदे हो। सुंदर लंबर इंडस्ट्रीज दा पता है 3501 23rd स्ट्रीट नॉर्थ ईस्ट कैलगरी। प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक एग्जोटिक एक्सटीरियर्स ग्रुप दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। किसी भी तरह दी साइडिंग, रूफिंग, सॉफ्ट फेशिया, जेम्स हार्डी, ईव स्ट्रॉफ अते स्मार्ट बोर्ड दे कम कराउण दी जानकारी लई एग्जोटिक एक्सटीरियर्स ग्रुप नू कॉल कर सकदे हो 403-710-0007 403-710-0007।
1: प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक एशिया पैसिफिक इमीग्रेशन दे मनिंदर सिंह ढिल्लो होरां दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। इन्हां दा फोन नंबर नोट करो 403-225-1111 403-225-1111। एशिया पैसिफिक इमीग्रेशन दे मनिंदर सिंह ढिल्लो होरां दा पता नोट करो, यूनिट नंबर 144-3670 63 एवेन्यू नॉर्थ ईस्ट कैलगरी।

0: प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक पाठ पूजा वालियां दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। इना कोल धार्मिक ऑडियो अते वीडियो, रेडियो, धार्मिक वॉल हैंगिंग्स, शस्त्र, ककार, म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट्स जिवें ढोल, हारमोनियम, तबला, तुम्बी अते हर तरह दे पूजा दे समान दी जानकारी ले कॉल करो 403-768-1681 403-768-1681। इना दा पता नोट करो, यूनिट नंबर 1120 4150 109th एवेन्यू नॉर्थ ईस्ट कैलगरी।
1: प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक मालवा टायर्स एंड सर्विसेज दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। ए 24 घंटे सत्तो दिन मोबाइल सर्विसेज प्रदान करदे ने। इना तो किसी भी तरह दे नवे ते पुराने ट्रक एंड ट्रेलर टायर्स, व्हील बैलेंस एंड अलाइनमेंट्स, टायर रोटेशन एंड रिपेयर्स दीयां सेवावां लैण लई तुसी मालवा टायर्स नू 403-899-1985 जां फिर 403-899-1984 ते संपर्क कर सकते हो। मालवा टायर्स एंड सर्विसेज दा पता है, बिल्डिंग नंबर 8616 44th स्ट्रीट साउथ ईस्ट कैलगरी। प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक पंजाब फर्नीचर्स एंड डेकोर दी सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। इना तो किसी भी तरह दे इंडियन टीक वुड मेड बेड बॉक्स, सोफे, लिविंग डाइनिंग ते बेडरूम फर्नीचर तो इलावा होम डेकोर दे सामान बारे कोई भी जानकारी लैण लई तुसी पंजाब फर्नीचर्स एंड डेकोर नू 403-798-0063 यानी 403-798-0063 ते संपर्क कर सकदे हो। पंजाब फर्नीचर्स एंड डेकोर दा पता है, यूनिट नंबर 2110 76 वेस्ट विंड्स क्रिसेंट नॉर्थ ईस्ट कैलगरी।

0: प्रोग्राम का ए हिस्सा खालसा कलेक्शन दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। इना कोल सभ्याचारक अते धार्मिक जिवें कि गुटका साहब, गतका अते दुमाला, शस्त्र, ककार, हर प्रकार दे म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट्स, दस्तारां, छोटी बच्चियां दे सूट, सर्ब लो दे पांडे, फुलकारियां ते लोईयां वर्गियां वस्तां उपलब्ध हन। होर जानकारी लई 587-917-0807 ते कॉल करो। खालसा कलेक्शन दा पता नोट करो। सेकंड फ्लोर, यूनिट नंबर 3210-4310-104 एवेन्यू, नॉर्थ ईस्ट, कैलगरी। प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक एग्जोटिक एक्सटीरियर्स ग्रुप दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। किसी भी तरह की साइडिंग, रूफिंग, सॉफ्ट फेशिया, जेम्स हार्डी, ईव स्ट्रॉफ अते स्मार्ट बोर्ड दे काम कराउण दी जानकारी लई एग्जोटिक एक्सटीरियर्स ग्रुप नू कॉल कर सकदे हो 403-710-0007, 403-710-0007।
1: प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक एशिया पैसिफिक इमीग्रेशन दे मनिंदर सिंह टिल्लो होरां दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। इना दा फोन नंबर नोट करो 403-225-1111 403-225-1111। एशिया पैसिफिक इमीग्रेशन दे मनिंदर सिंह टिल्लो होरां दा पता नोट करो। यूनिट नंबर 144, 3670 एवेन्यू, नॉर्थ ईस्ट, कैलगरी।

प्रोग्राम दा ए हिस्सा त्वाडे तक कैनेडियन स्क्रू पाइल्स दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। होम एक्सटेंशन, पैटियो डेक, प्रीकास्ट कंक्रीट स्टेप अते किसी भी तरह दी सॉफ्ट ग्राउंड जिमे गैराज फ्लोर दे स्ट्रॉन्ग अते सिक्योर बेस लई स्क्रू पाइल्स इंस्टॉल कराउन लई जसकरन बराड़ नू कॉल करो 403-439-7700 403-439-7700। प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक फेयर डील फर्नीचर दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। किसी भी तरह दे मॉडर्न, ट्रेडिशनल, कस्टमाइज्ड फर्नीचर दी जानकारी लई पिछले 33 सालां तों कैलगरी विच सेवावां दे रहे फेयर डील फर्नीचर नू कॉल करो 403-250-5646 403-250-5646। इना दा पता है 2023 34th स्ट्रीट नॉर्थ ईस्ट कैलगरी। प्रोग्राम दा ए हिस्सा इंटरनेशनल एजुकेशन एंड एम्प्लॉयमेंट लिमिटेड दे सहयोग नाल तुहाडे तक पहुंचाया जा रहा है। जे कोई तुहाडा रिश्तेदार कैनेडा विच पढ़न लई आना चाहता है या तुसी कैनेडा विच रहंदे हो ते किसे भी कॉलेज विच पढ़न लई एडमिशन लेनी चाहते हो ता इस दी जानकारी लई कॉल करो बॉबी डॉड एट 403-561-9811 403-561-9811। साडा पता है इंटरनेशनल एजुकेशन 1130 4818 वेस्ट विंड्स ड्राइव नॉर्थ ईस्ट कैलगरी।

प्रोग्राम का ए हिस्सा ABM कॉलेज दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। ABM कॉलेज विच किसी भी तरह दे हेल्थ प्रोग्राम्स, बिजनेस या IT प्रोग्राम्स दी जानकारी लेने लई कॉल करो 403-719-4300 403-719-4300। और जानकारी लई साड़ी वेबसाइट abmcollege.com ते विजिट करो। प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक सुंदर लंबर इंडस्ट्रीज दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। इना तो तुसी फुल हाउस लंबर पैकेज, बेसमेंट ते गैराज मटेरियल दे नाल नाल सीटर ते फेंस दे समान बारे कोई भी जानकारी लैण लई 403-433-5555 यानी 403-433-5555 ते संपर्क कर सकदे हो। सुंदर लंबर इंडस्ट्रीज दा पता है 3501 23rd स्ट्रीट नॉर्थ ईस्ट कैलगरी। प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक YYC होम केयर सर्विसेज दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। ए किसी भी उम्र तो लैके बुजुर्गां तक दी घर विच रह के संभाल करदे ने। इना दे एक्सपीरियंस्ड पंजाबी केयरगिवर्स डेली एक्टिविटीज जिवें नवाउणा, दवाई देना, अपॉइंटमेंट्स ते लैके जाना या सफाई विच मदद करदे ने। तुहानू जेब विचों कोई भी खर्चा नहीं आएगा, ए सीधा सरकार नू बिल करदे ने। होर जानकारी लई कॉल करो 825-760-0983 825-760-0983।

0: परमजीत पलाहा डेजर्डिन इंश्योरेंस एजेंट दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है।
1: इना तो किसी तरह दी इंश्योरेंस जिमे लाइफ डिसेबिलिटी ऑटो होम मोटरबाइक बोट अते होर बिजनेस इंश्योरेंस बारे जानकारी लेन ले तुसी परमजीत पलाहा जी नु 403-554-4444
0: यानी 403-554-4444 ते संपर्क कर सकते हो। परमजीत पलाहा जी दे ऑफिस दा पता है यूनिट नंबर 210-3232 32nd Avenue नॉर्थ ईस्ट कैलगरी। वाहे गुरु जी का खालसा वाहे गुरु जी की फतेह। कैलगरी दे इको एक पंजाबी धार्मिक रेडियो 102.7 FM ते हुन सर्वन कर दिया श्री हरमंदर साहब अमृतसर तो श्री रहरा साहब जी दे पाठ। वाहे गुरु जी का खालसा वाहे गुरु जी की फतेह।

कहो शर्मा जाप ताप संयम धर्म ना कमाया सेवा साध न जानिया हर राया कहो नानक हम नीच करमा शरण परे की राख हो शर्मा। एक ओंकार श्री वाहे गुरु जी की फतेह। पातशाही दसवीं कवियो वाच बेनती चाओ पाई हमरी करो हाथ दै रक्षा पूरन होए चित की इच्छा तब चरणन मन रहे हमारा अपना जान करो प्रतिपारा हमरे दुष्ट सवै तुम कावहु आप हाथ दै मोहे बचावहु सुखी बसै मोरो परिवारा सेवक सिख्यो सवै करतारा मोर अच्छा निज कार दै करिया सब बैरन का आज संगरिया पूरन होए हमारी आसा तोर भजन की रह प्यासा तुम्हें छाड़ कोई अवर ना ते आऊं जो बर चाहो सो तुम ते पाऊं सेवक सिख्यो हमारे तारी है चुन चुन सत्र हमारे मारी है आप हाथ दै मुझे उबरी है मरन काल का त्रास निवरी है हुजो सदा हमारे पच्छा श्री अस तुज जू करिय हो रक्षा राख लेहु मोहे राखन हारे साहेब संत सहाय प्यारे दीन बंद दुष्टन के हंता तुम हो पुरी चतुर्दस कंता काल पाए ब्रह्मा बप तरा काल पाए शिवजू अवतरा काल पाए कर बिसन प्रकाशा सकल काल का किया तमाशा जवन काल जोगी शिव कियो वेदराज ब्रह्मा जू थियो जवन काल सब लोक सवारा नमस्कार है ताहे हमारा जवन काल सब जगत बनायो देव दैंत जक्षण उपजायो आद अंत एक अवतारा सोई गुरु समझी अहो हमारा नमस्कार तिस ही को हमारी सकल प्रजा जने आप सवारी सिवकन को सिव गुण सुख दियो सत्रन को पाल मोह बद कियो काट काट के अंतर की जानत भले बुरे की पीर पछानत चीटी ते कुंचर असथूला सब पार कृपा दृष्ट कर फूला संतन दुख पाए ते दुखी सुख पाए साधन के सुखी एक एक की पीर पछाना काट काट के पट पट की जाना जब उदकर्ख करा करतारा प्रजा धरत तब देहे अपारा जब आकर्ख करत हो कबहू तुम मैं मिलत देह तर सबहू जेते बदन श्रेष्ठ सब तार आप अपनी बूझ

मोहे तेती तुमरा लखा ना जाए पसारा के हो वेद सजा प्रथम संसारा एकाय रूप अनूप सरूपा रंक पयो राव कही पूपा अंडज जेरज सेत जकीनी ओत पोज खान बहुर राच दीनी कहूं फूल राजा हुए बैठा कहूं सिमट पयो संकर एकैठा सगरी श्रेष्ठ दिखाए अचंपव आद जुगाद स्वरूप स्वयं पव अब रक्षा मेरी तुम करो सिख्य उबार असिख्य संगरो दुष्ट जेते ओठवात उत्पाता सकल मलेश करो रण काता जे अस तुज तब सरनी परे तिनके दुष्ट दुखित हुए मरे पुरख जवन पग परे तिहारे तिनके तुम संकट सब टारे जो कल को एक बार त्याय है ताके काल निकट नह आ है रक्षा होए ताहे सब काला दुष्ट अरिष्ट टरें तत्काला कृपा दृष्ट तन जाहे निहर हो ताके ताप तनक महर हो रिद्ध सिद्ध कर्मो सब होई दुष्ट छाह छुए सकै न कोई एक बार जेन तुम्हें संभारा काल फास ते ताहे उबारा

सवैया पाए गहे जब ते तुमरे तब ते को आंख तरे नहीं आने ओ। राम रहीम पुराण कुरान अनेक कहें मत एक न माने ओ। सिमृत शास्त्र वेद सबै बहुभेद कहें हम एक न जाने ओ। श्री आसपान कृपा तुमरी कार मैं ना कहो सब तो बखाने।

राम कली महला तीजा आनंद एक ओंकार सतगुर प्रसाद। आनंद भया मेरी माए सतगुरु मैं पाया, सतगुर ता पाया सहज सेती मन वजिया वाधाइया। राग रतन परवार परियां शब्द गावण आईया, शब्दो ता गावहो हरि केरा मन जिनी वसाया। कह नानक आनंद होआ सतगुरु।

पाया। ए मन मेरेया तू सदा रहो हर नाले, हर नाल रहो तू मन मेरे दुख सब विसारना। अंगीकार ओह करे तेरा कार्य सब सवारना। सबना गल्ला समरथ स्वामी सो क्यों मन हो विसारे। कह नानक मन मेरे सदा रहो हर नाले। साचे साहेबा क्या नाही कर तेरा, घर ता तेरा सब किछ है जिस देह सो पावे। सदा सिफत सलाह तेरी नाम मन वसावे। नाम जिनकै मन वसया वाजे शब्द कनेरे। कह नानक सच्चे साहिब क्या नाही कर तेरा, साचा नाम मेरा आधारो। साच नाम आधार मेरा जिन भुखा सब गवाइया। कर सांत सुख मन आए वसया जिन इच्छा सब पुजाइया। सदा कुर्बान कीता गुरु विट हो जिस दिया एह बड़े आईया। कह नानक सुन हो संत हो शब्द तर हो प्यारो। साचा नाम मेरा आधारो वाजे पंच शब्द तितकार सभागै। कर सभागै शब्द वाजे कला जेत कर तारिया। पंच दूत तुद वास कीते काल कंटक मारिया। तुर कर्म पाया तुद जिन कौ से नाम हर कै लागे। कह नानक तह सुख हुआ तितकार अनहद वाजे।

गुरु बोलो जे पंजा प्यारे आ चौहान साहिब जादे आ चालियां मुक्ते आ हठिया जपिया तपिया जिन्ना नाम जपिया वंड छके आ दे चलाई ते गवाही देख के आनंद डिठ कीता तिन्ना प्यारिया सत्यारिया दी कमाई दा ध्यान तर के खालसा जी बोलो जे वाहे गुरु बोलो जे जिन्ना सिंगा सिंगणिया ने धर्म हेत शीस दिते बंद बंद कटाए खोपरिया लोहाइया चरखड़िया ते चढ़े आरिया नाल चराए गए गुरद्वारिया दी सेवा लई कुर्बानियां कीतियां धर्म नहीं हारिया सिखी किसा सवासा नाल निभाही तिना दी कमाई दा ध्यान तर के खालसा जी बोलो जे वाहे गुरु बोलो जे पंजा तख्तां सरबत गुरद्वारिया दा ध्यान तर के बोलो जे वाहे गुरु बोलो जे प्रथमे सरबत खालसा जी की अरदास है जी सरबत खालसा जी को वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु चित आवे चित आवन का सदका सर्ब सुख होवे जहां जहां खालसा जी साहेब तहा तहा रचिया रे आयत देग तेग फतेह बिरद की पैज पंथ की जीत श्री साहेब जी सहाय खालसे जी के बोल बल्ले बोलो जी वाहे गुरु बोलो जे सिखा नू सिखी दान केस दान रहत दान बिबेक दान विसाह दान भरोसा दान दाना सिरदान नाम दान सिर

0: वाहे गुरु जी का खालसा, वाहे गुरु जी के फतह।
1: छुटत प्रवाह अमेय अमरा पद, अमृत सरोवर सद परेया, ते पीवह संत करहे मन मज्जना, पोब जिन्हो सेवा करिया, तिन पौ निवार अन पै पद दीना, शब्द मात्र ते उधर तरे, कब काल्य ठाकुर हर दास तने, गुर राम दास सार अपार परे। सुन यार हमारे सज्जना, एक करों बेनंतिया, तिस मोहन लाल प्यारे, हौ फिराऊं खोजंतिया, तिस दस प्यारे सिर धरी उतारे, एक पोरी दर्शन दीजा, नैन हमारे प्रिय रंग रंगारे, एक तिल पीना तीरीजा, प्रभ स्यों मन लीना ज्यों जल मीना, चात्रिक जिवै तिसंतिया, जन नानक गुर पूरा पाया, सगली तिखा बुझंतिया, तुमरी शरण तुम्हारी आसा, तुम ही सज्जन सोहेले, रख हो रखन हार दयाला, नानक करके गोले, अंदर सच्चा ने लाया प्रीतम आपना, तन मन होए निहाल, जा गुर देखा सामने, सो कहो टल गुर सेविया, अहनिस सहज सुभाय, दर्शन परसया गुरु का, जन्म मरण दुख जाय, होवै सिफत खसम दी, नूरे अरसहु कुरसहु चटिया, तुद डिठे सच्चे पाते सा, माल जन्म जन्म दी कटिया, सज्जन सच्चा पाते साहु, सिर साहदा साहु, जिस पास बैठया सोहिया, सबना दा वेसा, सज्जन सच्चा पाते साहु, सिर साहदा जिस पास बैठया सोहिया, सबना दा वेसा। सत

साहिब जी तनासरी भगत रविदास जी के एक ओंकार सतगुर प्रसाद हम सर दीन दयाल ना तुम सर अब पतियार क्या कीजा बचने तोर मोर मन मान जान का पूरन दीजा हम सर दीन दयाल ना तुम सर अब पतियार क्या कीजा बचने तोर मोर मन मान

बहुत जन्म बिछड़े थे मादा, यो जन्म तुम्हारे लिखे कह रविदास आस लग जीवा चिर पयो दर्शन देखे वाहे गुरु जी का खालसा वाहे गुरु जी की फतेह।

0: ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।
1: कैलगरी च 24 घंटे सत्तो दिन प्रसारित होने वाले इको एक पंजाबी धार्मिक रेडियो 102.7 FM ते हर हफ्ते सोमवार तो शुक्रवार शाम 6 बजे तो 8 बजे तक तुसी सुनदे हो गुरबाणी विचार प्रोग्राम पंजाबी रेडियो कैलगरी दे होस्ट प्रोफेसर मनजीत सिंह प्यासा द्वारा।
2: प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक फेयर डील फर्नीचर दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। किसी भी तरह दे मॉडर्न ट्रेडिशनल कस्टमाइज्ड फर्नीचर दी जानकारी लई पिछले 33 सालां तों कैलगरी विच सेवावां दे रहे फेयर डील फर्नीचर नूं कॉल करो 403-250-5646 403-250-5646। इना दा पता है 2023 34th स्ट्रीट नॉर्थ ईस्ट कैलगरी।
3: प्रोग्राम दा ए हिस्सा खालसा कलेक्शन दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। इना कोल सभ्याचारक अते धार्मिक जिवें कि गुटका साहब गतका अते दुमाला शस्त्र ककार हर प्रकार दे म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट्स दस्तारां छोटी बच्चियां दे सूट सरब लो दे पांडे फुलकारियां ते लोईयां वर्गियां वस्तां उपलब्ध हन।